0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
2: जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: तक आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। तो जी हाँ, स्टेशन क्लॉक में 6:06 हो रहे हैं। हम दो धुरंधर यहाँ पे पहुंच चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। यह बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और कशिशमा मैडम, की हाल है
1: यार? हाल तो मत ही पूछो यार।
0: क्या
1: मतलब
0: हो गया?
1: पहले जो है सबकी तबीयतें खराब हो रही थी, सबको वायरल फीवर हो रहा है।
0: हाँ।
1: सबका गला खराब हो रहा है, फीवर आ रहा है, एंड मैं खुश थी कि चलो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे नहीं हो रहा है।
0: अच्छा।
1: लेकिन तभी मुझे खुद की नजर लग गई और मुझे जो है कोल्ड हो गया है।
0: देखो, बहुत टैलेंट चाहिए होता है खुद की नजर लगने में। ये तो आपने मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा टैलेंट प्रूव कर दिया।
1: Yes.
0: इस एक मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सुदेव को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। इतनी छोटी सी उम्र बोल के मुझे किंडरगार्टन का फील करवा रहे हैं बार बार,
0: उससे भी नीचे। बट यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं, एक नया वीक जो है शुरू हो चुका है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आंखों में आंसू लेके जा रहे हैं कि भाई आज जाना पड़ रहा है यार।
1: Yes.
0: क्या करे यार, काम है क्या करे। मैं देखिए, मैं यही बोलूंगा कि काम है, काम को काम की तरह ही ट्रीट कीजिए। मैं आज सुबह आते वक्त गाड़ी में नींद लग रही थी मेरी, ठीक है।
1: हाँ।
0: जब नींद लग रही थी तो एकदम से मेरे मन में थॉट आया, तो काम के बारे में थॉट आया था इसलिए नींद लग गई थी।
1: हाँ।
0: बट जब मैं उठा तो देन आई रियलाइज कि यार काम के साथ ना हम बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं।
1: राइट।
0: इसलिए हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि यार ये कर दिया, ये हो गया। काम को काम के दायरे में रखो, काम करो, डिटैच्ड होके काम करो।
1: Yes.
0: अच्छे से काम करो, ऐसा नहीं है बस करने के लिए कर रहे हैं। अच्छे
1: Yes.
0: से काम करो, डिटैच्ड होके काम करो, और काम खत्म वहीं छोड़ दो उसे। उसके बर्डन को अपने साथ लेकर मत आओ। देखिए यार,
1: Exactly.
0: बहुत वजन ऑलरेडी हमारे ऊपर है। मैं तो अपने बारे में अगर बात करूं तो मेरे ऊपर ही बहुत ज्यादा वजन है, ठीक है। मेरे घुटने सब अभी
1: बोलते
0: रहे हैं
1: तो बट बिल्कुल सही बात करी आपने। और शाहरुख खान साहब की एक बात मुझे याद आती है कि जब भी आपके पास बहुत काम होता है ना, तो आपको खुश नसीब समझना चाहिए खुद को कि आपके पास काम है। क्योंकि जब कुछ महीने पहले की बात थी, बात हो सकती है कि जब आप सोच रहे थे यार मेरे पास काम क्यों नहीं है या मुझे ये काम करना है, और अब आपके पास काम है तो आप खुश नसीब है। बस उस काम को काम समझ के इंजॉय कीजिए। एक पार्ट है लाइफ का, पूरा पूरी लाइफ नहीं है काम।
0: क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, इस उम्र में ऐसी बढ़िया बातें आपने। कैसे इतनी लेजेंडरी बात की, लेजेंडरी तुलसी कुमार का
1: जानबूझ के करते हो ना मेरी बात के बाद सीधे तुलसी कुमार।
0: नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसी बात है तो

0: मगर हम शो की शुरुआत करेंगे तू ही दिसदा। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में भूत बंगला मूवी का गाना है ये। गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर पहले बता दे कि भाई अपने मैसेजेस भेज दीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी आपके गुड मॉर्निंग कोट्स मैसेजेस बताइए क्या हाल है और इस हफ्ते के
1: क्या प्लान है।

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में। बिंदास
1: मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई हमारे पास आए हैं थोड़े मैसेजेस, तो जरा देख लेते हैं एक एक करके। पहले तो
1: थोड़े तो नहीं है, देखो बहुत है।
0: हाँ मतलब वो थोड़ा हमें से अंडरस्टेटमेंट,
1: थोड़े बहुत आए हैं, थोड़े
0: क्या बात कर रहे हैं, जो जुगलबंदी बनाई है ना थोड़े और बहुत के बीच में। गुड मॉर्निंग, गिव योरसेल्फ परमिशन टू लिव अ बिग लाइफ, स्टेप इनटू हु यू आर मेंट टू बी, Stop playing small. You're meant for greater things. करके वाह भाई, जुल्फी भाई ने मैसेज भेजा है बहुत ही बढ़िया जुझारू मोटिवेशन के साथ, थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज आया उनका, उन्होंने ये भी लिखा है कि गुड मॉर्निंग, रिलैक्स, यू हैव अ गुड हार्ट एंड प्योर इंटेंशंस, थिंग्स विल ऑलवेज एंड अप वर्किंग आउट इन योर फेवर। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और यहाँ पे ऋषि का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्यूटीफुल डे, जियो बिंदास। थैंक यू सो मच ऋषि, आपको भी काफी बढ़िया दिन हम विश करते हैं और जियो बिंदास। और सबिया साची रुद्रा का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग सबिया भाई, और आपको भी काफी बढ़िया और प्यारा दिन हम विश करते हैं। शशिकांत जी का मैसेज आया है, शशिकांत जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, प्योरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड, sincerity in action and contentment is the formula for happiness.
1: ये बढ़िया बात कर दी।
0: थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। नाजनीन जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, लेट योर हार्ट बी योर गाइड टुडे। वाओ वाओ वाओ, यूजुअली मेरा जबान जरा फिसल गया थोड़ा, सॉरी। हमेशा ना कश्मकश रहती है, दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक बहुत ही महान व्यक्ति का एक कोट सुना था, जहाँ पे लिखा था कि दिल की सुनो और उसे पूरा करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो।
1: हाय हाय,
0: है ना, बढ़िया बात है ना,
1: सही बात है
0: बिल्कुल। ये जिंदगी का उसूल यही है कि दिल की सुनो बट उस चीज को पूरा करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो। ये कश्मकश तो रहेगी, हमेशा रहेगी,
1: लाइफ टाइम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो दिल कह रहा है वो करो, जो दिल कह रहा है उसको सही बनाओ।
0: क्या बात कर दिया आपने, क्या बात कर दी, बहुत बढ़िया वाली बात कर दी आप। और इसी खुशी में हम यहाँ पे थोड़े प्यारे गाने भी आपके लिए प्ले करें।

0: चल चल चल चल चल अगला
1: चल चल चल चल चल चल चल यार एक बात बताओ, ये सवाल पूछने का वक्त होने वाला है तो क्या सवाल वाले गाने सुनाओगे आप?
0: सवाल वाले गाने?
1: हाँ
0: क्यों, ऐसे क्यों?
1: इसमें पूछा ना उसने।
0: अच्छा ऐसे, वो ऐसा जरूरी मतलब मैंने जबरदस्ती नहीं किया था, बस एक काफी खूबसूरत सा इत्तेफाक था।
1: सो अगर आप मुझे आंसर नहीं आता होगा ब्लैक बोर्ड स्टोरी के क्वेश्चन का, तो मैं ये बोलूंगी चल चल चल चल चल चल चल।
0: कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। मगर एक और प्यारा गाना जो है आपके रेडियो सेट में प्ले होने वाला है थोड़ी देर में, दिल मांगे मोर का गाना है।
1: yes, दिल मांगे मोर का गाना है। आज 90s का ड्रेसिंग सेंस जो है वो लेकर आए हैं तो इसीलिए 90s के और अर्ली 2000 के गाने जो है वो चला रहे हैं।
0: जी
1: बढ़िया है।
0: मगर अभी तो हम एक लेजेंडरी मैशअप चलाने वाले हैं जिसमें आतिफ और अरिजीत के गाने जो हैं आप सुनेंगे और बीच में लेजेंडरी तुलसी कुमार के भी।
2: रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: तो ये है द लव मैशअप।
1: नाइस,
0: एंजॉय कीजिए इसे, एक साथ बैठकर और कहते रहिए
1: जियो विद दैट।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिल मांगे मोर मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में अभी 6:35 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक सवाल पूछने के लिए हम दोनों पहुंच चुके हैं और सवाल भी काफी सिंपल है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है आज के दिन के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो सेट करते हैं, मगर चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज को।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ये, क्योंकि आजकल की दुनिया में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता, तो शायद इतने दूर होने के बावजूद भी हम करीब नहीं आ पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक दिन है ये, इस दिन को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम सवाल पूछेंगे वर्ल्ड के सबसे पहले टेलीफोन कॉल के बारे में। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन इन्वेंट किया था और उन्होंने पहला कॉल किया था, और पहला कॉल करके उनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था मिस्टर वॉटसन कम हियर आई वांट टू सी यू करके, ठीक है, ये था उनका फर्स्ट स्टेटमेंट। तो मेरा सवाल है कौन से साल में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहला टेलीफोन कॉल किया, आप बताइए मुझे इसका आंसर। 3311063 पर मैसेज करके आप मुझे ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, बट तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी सवाल का जवाब जो है दे दीजिए।
1: yes.
0: और प्रूफ कर दीजिए कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, इन सबसे तेज है, मगर कशिश से इस बार तेज नहीं हो सकते। मेरा मन
1: कशिश ने पहले आंसर दे दिया है,
0: कशिश ने पहले ही आंसर दे दिया है। यहाँ पे भाई मैं चकित रह गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई आप जल्दी जल्दी आंसर दे दो, आज तो कशिश गोल लेके चली गई। और ये गाना स्पेशली कशिश के लिए, दिल में जो बात है कहना मत अभी, जब वक्त आएगा तभी। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी अभी अलका जी और सोनू जी को कहने दो, उनको चांस दे देते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड
1: जी अविनाश।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हमने पूछा था एक सवाल कि सबसे पहला फोन कॉल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने
1: टेलीफोन
0: कॉल जो है सबसे पहला कब किया था, किस साल में किया था। और यहां पे भाई जनता जो है एकदम बढ़िया तरीके से जागरूक हो चुकी है। मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज और आंसर भी मिल गया। माई लॉर्ड आंसर भी मिल गया।
1: अब जब तक आप जो मैसेज जो है वो खोल रहे हैं तब तक मैं बता दूं कि मुझे कैसे आंसर पता था।
0: हाँ।
1: तो क्या है कि आप ना आज स्टोरी ऑफ द डे सुनने वाले हैं।
0: हाँ।
1: जो मेरी आवाज में है।
0: ओके।
1: सो ये जो है स्टोरी ऑफ द डे जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी। हाँ। आप लोगों को सुनाने के लिए, बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने

0: के लिए तो मैंने पढ़ लिया था, इसीलिए हमने आज सुबह कहा था कि आपको काम करना इंपॉर्टेंट होता है, काम पे ध्यान देंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। अभी जुबैर भाई का मैसेज आया, उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग 10th March 1876। उसके साथ साथ मुझे शैली का मैसेज आया, नहीं शैली नाम के अकाउंट से मैसेज आया है, रोशिका ने मैसेज किया है 1876 करके। कमरनिसा जी ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है 10th March 1876। पल्लव जी ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है 1876। और उसके साथ साथ मुझे जो है अली भाई का एक मैसेज आया है, अली भाई ने एक ऑडियो भेजा। अली भाई ऑडियो लोड नहीं हो पा रहा आपका, मैं सुनूंगा, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब दिया है। और उसके साथ साथ मुझे एक मैसेज आया था प्रशांत जी का, उन्होंने बोला कि सुदेव मैंने काफ मसल्स के बारे में जो डिस्कशन था आपका सुना था थर्सडे को, तो मैंने ये भी सुना था कि दिमाग घुटने के नीचे पाया जाता है, अब पता चला कि दिल भी घुटने के नीचे ही रहता है। तो ये सही बात कही भाई, अच्छा लगा हमें बहुत। तो जनता ने जो है आज काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया है और हर बार की तरह सही जवाब दिया है, तो तालियां। अब इसी खुशी में काम करते हैं, एक बहुत ही क्यूट गाना सुनते हैं, क्यूट ही नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा इंटेंस गाना भी है, जुबिन नौटियाल की आवाज में, धुरंधर रिवेंज का गाना है आखिरी इश्क। तो फ्रेश सॉन्ग को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं
0: जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 7:06 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है, चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं।
1: yes, मौसम,
0: कैसा
1: मौसम
0: चल रहा है? मौसम मौसम मौसमिंग कर रहा है नहीं कर रहा है ये हम देखेंगे।
1: मौसमिंग बहुत अजीब सी मौसमिंग कर रहा है। मौसमिंग बिल्कुल, मुझे इस वक्त जैसे हम हाइपर मार्केट में जाके फ्रूट्स देखते हैं ना, ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो कोई खट्टा निकलता है, पता नहीं चलता है, बिल्कुल वैसे हो रहा है। अभी एसी में बैठ कर आप बाहर कार की खिड़की से भी अगर बाहर देखोगे लगे ओ माई गॉड
0: क्या बात,
1: मौसम बात, मौसम
0: जैसी खिड़की नीचे
1: ऐसा लगता
0: भपका लगेगा।
1: गरम गरम ओवन का गेट खोल दिया है ऐसा लगता है।
0: अभी जो टेम्परेचर है वो दिखाया जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आज का हाईएस्ट टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। कंपैरेटिवली जो है थोड़ा
1: ठंडक है। और अभी मैंने जो है, मैं फ्राइडे को या नहीं, मैं सैटरडे नहीं, थर्सडे की शाम को जो है मैं वहां पे गई थी, ओल्ड दोहा पोर्ट गई थी। एंड जब मैं यहाँ से निकली थी ऑफिस से तो कड़कती हुई धूप थी, जब तक मैं पहुंची वहां पर तब तक बदली छा गई थी, अच्छा अच्छा मौसम हो गया था। यानी अभी भी शाम को थोड़ी होप है कि आपको जो है गर्मी से राहत मिल सकती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद की किरण जो है अभी भी यहाँ पे है।
1: किरण तो बहुत तेज है अभी, अभी किरण मेरा नहीं, सूरज की किरण की बात मत कीजिए अभी।
0: और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि आज जो है हवाएं 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहेंगी और मेरा सवाल यही है कि क्या ये हवा तनीषा को उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: तनीषा को उड़ा के ले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: तनीषा भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? मैं यही बोल रहा था, मैं और तनीषा सैटरडे बाहर गए थे, सैटरडे नहीं फ्राइडे बाहर गए थे एंड वहाँ पे हम मिले अपने कुछ लिसनर्स से, तो ऐसे बात करते हुए उन्होंने बोला कि तनीषा बहुत साइलेंट है यहाँ पे। मैं जानता हूँ ऐसी नहीं है तनीषा। नहीं, तनीषा को थोड़ी चाबी देनी पड़ती है तब जाके तनीषा
1: वार्म अप लगता है। तनीषा को थोड़े दो तीन उनकी तारीफें करो ना, तब जाके अपने वाइब में वापस आती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वाइब से जो हमने बात की है, वाइब के बारे में बात किया, यहाँ पे गाने भी बहुत प्यारे प्यारे जो हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: तनीषा के लिए नहीं है ये गाना।
0: नहीं, तनीषा के लिए दूसरा गाना आएगा।
2: मेरे सवाल का तू ही जवाब है, ये सवेरे सवेरे ही खावा गया।
0: मगर अभी फिलहाल एक गाना सुनेंगे हम अरिजीत सिंह की आवाज में, जो बहुत ही प्यारा गाना है और ये गाना काफी लेयर्ड गाना है। जब ये गाना हम सुनते हैं स्पेशली मूवी के सीन के साथ तो आंखें भर आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें याद आ जाती है। देखिए हम सब जो हैं अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर, दोस्तों से दूर, यहाँ पे एक नई दुनिया बसा चुके हैं या फिर बसा रहे हैं। और जब हम वापस कभी जाते हैं तो हमें पता लगता है कि यार जिंदगी जो है वहां से आगे बढ़ चुकी है उनके लिए, और हम पुरानी यादों के साथ वहां जाते हैं। बट जब जाते तो पता चलता है कि करेंसी बदल चुकी है वहाँ,
1: करेंसी बदल चुकी है वहाँ पर, लोग जो है वो अपनी लाइफ हमारे बिना जीना सीख चुके हैं।
0: जी तो ये जो है एक स्टार्क रियलिटी है हमारे लाइफ की, ये कहीं ना कहीं तो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। जो मूवी के एंड में भी जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रणवीर ने अपनी आंखों से पोर्ट्रे किया है, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे टर्मोइल के थ्रू जो है उस एक दो तीन मिनट के या फिर 5 मिनट के सीन में वो गुजरते हैं और वो काफी खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया। तो फिर से सुनते हुए आगे बढ़ते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में धुरंधर रिवेंज से।

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसस।
0: और यहाँ पे हमारे पास आए थोड़े मैसेजेस। सामी भाई ने मैसेज किया है, बोला अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, कैसे हैं आप दोनों?
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: और हम दोनों बढ़िया हैं, सब दिल बढ़िया चल रहा है। और क्या बढ़िया फोटो खींचे भाई आपने, मजा आ गया देख के
1: मुझे तो। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि किस दिन आपसे मुलाकात हो। हाँ। और मुझे बोवन मिल गया जो स्टेम्स है वो मिले ताकि मैं भी लगा सकूं।
0: और इदरीस भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो एक प्रथा उन्होंने स्टार्ट की थी हमारे साथ वो बिल्कुल जारी रखी है। बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज
1: भेजे हैं भाई के चैट की, तो मैं जो है एक एल्बम बना सकती हूँ आराम तरीके आराम से। और आप मेरा पूरा वॉलपेपर का वो जो आप अगर देखें पिछले सारे वॉलपेपर्स, तो उसमें से दिख जाएगा इदरीस भाई की मैक्सिमम है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मैसेज भी डाला है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, गुड मॉर्निंग। और फोटोज भाई बहुत बढ़िया,
1: झड़ी लग गई है
0: बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने जाके फोटोज जो है खींचे हैं वो हमें भेजे हैं। बहुत ही प्यारे फोटोज भाई, बहुत ही प्यारे फोटोज, बहुत अच्छा लगा हमें देख के, मजा आ गया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं बताना चाहूंगा आपको, थोड़ी देर में जब गानों के उस पार हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी जैसे एक चीज के बारे में।
1: देखिये थेरेपी की मुझे तो जरूरत नहीं, मेरे पास तो सुदेव है।
0: क्या
1: आपको जिस थेरेपी की जरूरत है उसके बारे में बताएंगे हम।
0: Stay tuned, यह रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जी अभिदास।
2: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसूस।
0: और यहाँ पे भाई फिट है तो हिट है में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहेंगे, तो कुर्सी की पेटी जो आपने बांध रखी है थोड़ा टाइट कर लीजिए।
2: फिट है तो हिट है,
0: यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे अरोमा थेरेपी के बारे में।
1: आए, आए, आए।
0: जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लेजेंट सेंस जो है स्ट्रेस लेवल को कैसे इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। रिसर्च ये दिखाती है कि जो स्मेल है वो डायरेक्टली ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड होती है, और ये वही पार्ट है जो इमोशंस, मेमोरी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है।
1: अच्छा।
0: इसलिए कुछ स्पेसिफिक सेंस का मूड और स्ट्रेस पर इमीडिएट इफेक्ट जो है हो सकता है, जैसे लैवेंडर और कुछ सिट्रस सेंस जो है ब्रेन में रिलैक्सेशन रिलेटेड पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, और ये डायरेक्टली हार्ट रेट को कम कर देते हैं, यानी कि हम काम हो जाते हैं, एंग्जायटी परसेप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरऑल मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: तो देखो यार, स्टडीज जो है वो भी यही सजेस्ट करती हैं कि जो है प्लीजेंट सेंट जो है उससे अगर बॉडी को जो है एक्सपोज किया जाता है, सो स्ट्रेस जो है उसका रिस्पांस जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, एंड जिससे रिलैक्सेशन जो है वो आपको फील होने लग जाता है।
0: यस यस यस।
1: तो देखिए यार, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्मेल मेमोरी से भी लिंक्ड होती है, इसलिए कुछ सेंस इंस्टेंटली जो है आपको सेफ और काम जो है वो फील कराते हैं और आपकी वाली सेंस को जो है ट्रिगर करने लग जाते हैं। सो प्रैक्टिकल यूज यही है, बताइए उसे।
0: लैवेंडर जो है आपके स्लीप एनवायरनमेंट के लिए, आप सोने से पहले लैवेंडर सेंस को अगर आप सुनते हैं तो अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। और सुबह के लिए सिट्रसी सेंस जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि ऑफिस जाते हुए कुछ लोग सिट्रस लगाते हैं, सिट्रसी सेंस लगाते हैं। एक तो फ्रेशनेस जो है रहती है, दूसरा जब हम वो स्मेल जब हमें आती है तो हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं।
1: मेरे साथ भी ऐसे ही है कि जब मुझे जो है बहुत लो फील हो रहा होता है ना, बस अपना जो सिट्रसी वाला परफ्यूम है, थोड़ा सा टैंगी है, फ्रूटी है, उसे जो है स्प्रे करती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी जो है वो आती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो है एरोमा थेरेपी के कारण जो है वो होता है। बट काफी बार ऐसा होता है जब हमें लो फील होता है तो लेमन ग्रास जो है या नींबू जो है उसे स्मेल करने को कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रीजन यही है, थोड़े थोड़े हमने आपको बता दिया, अब यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सदेव,
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई बहुत ही बढ़िया बात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है। लोकल अपडेट्स में हम बताएंगे, कतर रेलवे कंपनी और प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन मिलकर जर्नी टुवर्ड हेल्थ अवेयरनेस इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इवेंट 18 से लेके 19 मई को अलसद स्टेशन दोहा मेट्रो गोल लाइन पर होगा, जहां वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे के ओकेजन पर ये इवेंट जो है कंडक्ट किया जाएगा। और इसका पर्पस है एक सीएसआर इनिशिएटिव के थ्रू पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना और मेट्रो स्टेशन को कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक पॉइंट बनाना।
1: बिल्कुल।
0: इवेंट में फ्री मेडिकल कंसल्टेशंस, हेल्थ चेकअप्स, एक्टिविटीज और अवेयरनेस बुकलेट्स गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो इस बार पहली बार मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, बताया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कतर जो है ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आता है जिससे यहाँ पे जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, सिटीजंस हैं, उन सबको काफी होलिस्टिक तरीके से ग्रोथ मिले।
1: यस,
0: हेल्थ में अच्छे रहे वो, नॉलेज में अच्छे रहे वो।
1: और मेट्रो स्टेशन मुझे ऐसा लगता है कि एक मेजर पार्ट है कतर का, क्योंकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल जो है वो मेट्रो से करते हैं, जो मैंने और कहीं उतना नहीं देखा है। जितनी कन्वीनियंट यहाँ की मेट्रो है वो कहीं और की नहीं है। एंड ये स्टेप जो है मिनिस्ट्री की तरफ से आना इज अ मेजर थिंग।
0: मेरे लिए तो सबसे बड़ा शॉकर ये भी था जब मैं यहाँ पे आया, हाँ। मेट्रो में ट्रैवल करने लगा तो मैंने देखा कि पायलट कहाँ है, पायलट कहाँ है भाई। मैं सोच रहा था कि शायद पीछे होगा, तो जब मैं वापस आया तो मैंने यहाँ भी नहीं है, ये कहाँ रहता है।
1: मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेट्रो ट्राई की थी आरजे आकाश के साथ, एंड उन्होंने मुझे लिटरली डरा दिया था कि देखो
0: ओके
1: है ही नहीं, लोको पायलट ही नहीं है, क्या करेंगे। फिर मुझे समझ आया कि यार कतर इतना एडवांस है कि यहाँ पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसे ट्रैवल करती हूँ जैसे आग बंद करके एक मेट्रो में घुसे और दूसरी जगह पे निकले।
0: जी, अब देखो कभी कभी चलते चलते भीड़ में चश्मा गिर जाता तो आग बंद करने की नौबत आई जाती है।
1: ठीक है, चलिए गाने की ओर आगे बढ़ते हैं। आप गाने एंजॉय कीजिए और बाकी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए
0: जियो बिंदास।

0: सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के 4 रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए 1 कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए 1 एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: तारा सुतारिया और अंकित तिवारी की आवाज में एक विलन रिटर्न्स मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसुर।
0: स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए भाई लीग के बारे में बात करते हैं। कशिश्मा मैडम बताइए क्या हुआ कल के दो मैचेस में।
1: सो देखिए यार, कल मैच जो था वो कोलकाता का था एंड गुजरात का मैच था, एंड उसमें से सबको लग रहा था कि यार गुजरात जीत जाएगी क्योंकि पिछले 5 मैचेस से जो है गुजरात जीत ही जा रही है। लेकिन फिर अपने होम ग्राउंड पे कोलकाता ने दिखा दिया कि यार ठीक है, देखो हम ना थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भूल गए खेलना। उन्होंने जो है बड़ा ही अच्छा गेम दिखाया। पहले गुजरात ने बैटिंग करके 218 रन जो है उसका एक वो दिया था,
0: टारगेट दिया था
1: एंड कोलकाता ने उसे चेस करते हुए 247 रन बना ली।
0: उल्टा था 247 कोलकाता ने स्कोर किए थे और 218 में जो है गुजरात ऑल आउट हो गई थी।
1: बट यार एक बात बताओ, कि क्या हो रहा है?
0: है ना, बढ़िया चल रहा ना उनका। देखिए इससे यही पता चलता है कि कभी भी किसी टीम को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते इवन दो शायद टीम हारी हुई हो, मगर अगर वो अपने पे आ गई तो बहुत बढ़िया खेल सकती है।
1: 29 रन से जो है जीती है कोलकाता। मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो क्योंकि मुझे लगा यार ये मैच देख के मतलब ही नहीं है।
0: मैं आपको बताता हूँ जरा उनके स्कोर्स के बारे में, ठीक है। अजिंक्य रहाणे और फिन एलन जो है ओपन करने गए थे, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने 14 बॉल्स में 14 रन स्कोर किए। फिन एलन ने 35 बॉल्स में 93 रन स्कोर किए, जिसमें से उन्होंने 4 चौके और 10 छक्के लगाए। यानी कि 4 चौके यानी कितने में 16, 10 सिक्सेस यानी कि 60, 76 तो इनके आए सिर्फ बाउंड्रीज से और बाकी 93 में से 76 आए। क्या हो गया?
1: देखो इन्हें जिस हिसाब से कैलकुलेशन जुदेव ने किया है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैं यही कह रही थी, आप स्कोर तो बता रहे पर मैं ये कह रही थी कि मुझे लगा कि ये वाला मैच देखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पिछले कुछ मैचेस ऐसी बहुत ऐसे जा रहे थे। बड़ा मुझे लगता है सारे मैचेस पे ध्यान देना पड़ेगा, देखने पड़ेंगे। स्कोर कार्ड देख के तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कुछ।
0: बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कोलकाता ने मैच में डोमिनेट किया था। अगर हम गुजरात के बैटिंग की बात करें, गुजरात में यार फिर भी उनका ओपनिंग पेयर जो था काफी अच्छा था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने काफी अच्छा खेला। साई सुदर्शन तो नॉट आउट रहे, शुभमन गिल ने 85 रन स्कोर किए, निशांत सिंधु ने 1 रन स्कोर किए, जोस बटलर ने 57 रन स्कोर किए, मगर फिर भी वो टारगेट कम्प्लीट
1: फिर भी हार गए
0: क्योंकि वहां पे जो प्लेयर्स थे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं।
1: सो मुझे अब लगता है कि सारे मैचेस बहुत अच्छे तरीके से देखने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है यार।
0: बिल्कुल कुछ ही दिन बाकी है और आज कौन से दो मैचेस होने वाले हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, आपको डिटेल देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में अभी 8:31 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। कशिश्वा मैडम, जरा बता दीजिए आज का एनालिसिस क्या हो सकता है।
1: आज का के जो दो मैचेस हैं वो काफी खास हैं क्योंकि पंजाब और बैंगलोर के बीच में पहला मैच होना है।
0: अच्छा।
1: एंड दूसरा मैच जो है वो होने वाला है दिल्ली और राजस्थान के बीच में।
0: अच्छा।
1: एंड आज का मैच इसलिए, आज के दोनों ही मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिर से ऐसे ये जो पॉइंट टेबल का फेर बदल है वो हो सकता है, डिपेंड करता है जीतों पर। ये जो बॉटम की चार टीम है ये लगी हुई है जुझारू रूप से कि किस तरीके से हम ऊपर वालों के स्कोर्स जो है वो खराब कर दे। मतलब ऐसा है कि हम तो डूब रहे हैं देखो सनम, लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे सनम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, मेरा दिल भी ऐसे धक धक कर रहा है क्योंकि भाई यार ऐसे नहीं करना चाहिए। हम बेचारे बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि चेन्नई क्वालिफाई हो जाए फाइनल के लिए।
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी टीम्स जो बॉटम में है चारों वो मिलके कोशिश कर रही है। देखो हम तो नहीं जीत पा रहे, एक काम करते हैं कि चेन्नई को हमारे तरफ से ऊपर भेज देते हैं।
0: हाँ प्लीज ऐसे कर दो और ऐसा हो जाए, प्लीज हो जाए।
1: ऐसे कैलकुलेशन भी है जो हम देख रहे थे कि अगर आज बैंगलोर हरा देती है दूसरी टीम को तो जो है हो सकता है कि चेन्नई ऊपर आ जाए। ऐसे बहुत सारे जो है कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं फैंस के द्वारा, लेकिन हम कैलकुलेशन पे नहीं, हम गट फीलिंग पे जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है बताइए हमें 3311063 पर मैसेज करके, ऑडियो नोट भेज के कि कौन सी टीम लग रहा है आपको कि जीत जाएगी। वैसे बैंगलोर का मैच है आज।
0: जो भी हो सो
1: देखा जाएगा। देखो क्रिकेट की जीत होनी चाहिए जैसे हम हमेशा कहते हैं।
0: बिल्कुल कौनी जीवा। लेकिन साडा प्यार तो चेन्नई है। कोशिश ये है कि भाई कुछ खलबली हो जाए। ग्राउंड में खलबली हो जाए, सारी टीम हार जाए, चेन्नई क्वालिफाई कर जाए, बस यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: बैंगलोर फॉर अ रीजन। जी अमिताभ।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm Radio Olive. I'm number one. The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: Shackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में बिंदास
0: मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक

0: एपी दिलों की आवाज में बोलो फिर से एक बार एपी दिलों बोलो
1: एपी दिलों
0: दिलों
1: दिलों
0: ठीक है सही बोला गलत बोला आप लोग जरा बताइए 3311063 पर मैसेज करके आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं एपी दिलों नहीं हूं मैं हूं आपकी कशिश
0: वो पता चल गया था जैसे ही आपने एपी दिलों नहीं हूं बोला तो भाई यहाँ पे वक्त आ चुका है टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने का टेक अपडेट्स आपके साथ शेयर करने का तो आज का जो टेक अपडेट है वो काफी बढ़िया है तो चलिए टेक जोन की ओर कदम रखते हैं
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बात करेंगे एक विशेष सूत्र से जो हमें खबर मिली है उसके अच्छा। बारे में एप्पल जो है अपने एप्पल वॉचेस में नए मॉडल्स में बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन को शायद नहीं इंक्लूड करेगा उससे ज्यादा वो एक और चीज पे ज्यादा फोकस करेगा वो होगा बैटरी कैपेसिटी और इंटरनल स्पेस
1: में इसकी तो बहुत जरूरत थी और सिर्फ एप्पल वॉच में नहीं एप्पल के सारे ही डिवाइसेस में इसकी बहुत जरूरत है
0: जी और अर्लियर रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि टच आईडी जो है वो एप्पल वॉच सीरीज 12 या अल्ट्रा 4 में आ सकता है अंडर डिस्प्ले या फिर साइड बटन के यहाँ पे बट अभी जो है उस चीज के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट ले लिया है करंट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 2026 में जो एप्पल वॉच मॉडल्स आएंगे उसमें मेजर डिजाइन चेंजेस तो नहीं होंगे जो मेजर रीडिजाइन होगा या फिर एक बिगर रीडिजाइन होगा वो 2028 के आसपास आ सकता है जहां पे एडवांस्ड हेल्थ टेक जैसे कि नॉन इन्वेसिव ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग ये सब भी आ सकता है बट ये सब अभी इनिशियल स्टेज में है अभी फिलहाल यही बात बताते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: रेडियो

0: The Big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो भाई आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे और आज हमने इसे रिलेटेड एक सवाल पूछा था और उसके साथ साथ हमें एक मैसेज आया था नेहा जी का। नेहा जी ने बताया था कि उन्होंने कहीं सुना है कि अभी जो हम हेलो बोलते हैं फोन उठाते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिन्होंने फोन का आविष्कार किया था उनके गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था, इसके थ्रू जो है हम हेलो बोलते हैं सबके थ्रू क्योंकि उन्हें वो पसंद था। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया कि कहीं सही में ऐसा है कि नहीं। तो गूगल माता से मैंने पूछा कि भाई हेलो ग्रीटिंग जो है कैसे आया है, तो उसमें यह बताया गया है कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं उनका चॉइस था अहोय।
1: अहोय, हाँ मैं भी वही पढ़ रही हूँ कि वो पहले अहोय बोला करते थे।
0: यस, अहोय करके
1: अहोय।
0: और
1: अहोय। अच्छा हुआ
0: और
1: नहीं
0: उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इसी का यूज किया। बट इस टर्म ने एक एवरीडे कॉन्वर्सेशन में एक जगह नहीं बनाई।
1: राइट,
0: एडिसन का चॉइस था हेलो बोलना।
1: हेलो बोलना,
0: ठीक है ना। 1877 में एडिसन ने सजेस्ट किया कि हेलो बोलते हैं क्योंकि एक लाउड शार्प वर्ड है जो टेलीफोन के जो स्क्रैची जो लाइंस है उससे काफी अच्छी तरीके से इधर उधर जा सकता है। ठीक है, हेलो हेलो जब हम बोलते हैं तो वो जाता है आराम से जाता है।
1: मतलब आप इमेजिन करो ना यार, अगर अहोय बोल रहे होते सो कितना वो होता ना कि मैंने अपने बॉस को जो है ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी ऑफिस, एंड मैं बोलूं अहोय
0: अहोय
1: सर
0: मेरी तबीयत खराब है।
1: ओहोय आपका बेटा फेल हो गया। ओहोय आज से हम ब्रेकअप कर रहे हैं।
0: क्या अलग लगेगा। बट हेलो में इमोशन इतना ज्यादा आ जाता है, तुम जो हेलो बोलते हो उस हेलो में पता चल जाता है कि इंसान किस चीज से गुजर रहा है।
1: अगर आपने हेलो बोलने में मास्टरी कर ली तो फिर आप एक्टिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हो। आपका हेलो जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, गर्लफ्रेंड मानेगी या नहीं मानेगी, मम्मी मारेगी या नहीं मारेगी।
0: ये सब आपके उस हेलो पे डिपेंड करता है।
1: लाइक अगर मम्मी को फोन, मम्मी का फोन उठाया नहीं ना तीन बार और चौथी बार में हाँ मम्मी, हाँ मम्मी हेलो, हाँ हाँ मम्मी आ रहा हूँ मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है,
0: बिल्कुल सही बात।
1: बॉस ने फोन किया सुबह सुबह लेट हो गए, हाँ हेलो, हाँ बॉस, हाँ हेलो,
0: क्या हो गया तभी ठीक है सर, थोड़ी सी खराब है पता नहीं क्या,
1: पर मैं आ रहा हूँ, पर मैं आ रहा हूँ,
0: आता हूँ थोड़ा,
1: पर मैं आ रहा हूँ।
0: नहीं कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। नहीं सर मैं आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं मदन, तुम रेस्ट कर लो। ओके सर सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। अरे क्या मतलब तुम्हारे उस हेलो ने जो एक वो बनाई है। बट हाँ, तो ये है हेलो का एक ओरिजिन जो है। अब यही बात बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद गानों के उस पार जब हम आएंगे तो हम एक सवाल लेकर आएंगे और इस सवाल का एक जवाब हम चाहेंगे। सही जवाब दिया तो आपके पास मौका है कुछ जीतने का। हम बताएंगे क्या है भाई बात। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: सी यू बिंदास।

0: दिल तो पागल है मूवी का गाना हमने सुना लता जी और उदित जी की आवाज में सर सर सर सर सर सर सर सर
1: सुदेव क्या आप का नाम दिल है
0: मेरा नाम
1: क्योंकि दिल तो पागल है ना दिल दीवाना है ना
0: एक और कुछ बोलो प्लीज
1: दिल तो सुदेव है ना इनफ
0: बस थैंक यू वही मुझे बोलना है इनफ आप सुन रहे हो रेडियो वाले 106.3 FM मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश
0: और यहां पे हम भाई एक सवाल पूछने के लिए आए हैं आपसे और सवाल का जवाब आपको देना है देखिए हम सब जानते हैं कि चाय जो है हम सबको पसंद है और कुछ ही दिनों में जो है
1: चाय पगलूज
0: जी मैं नहीं ये
1: आए मुझे आप नींद से आधी नींद से उठा के बोलो चाय पीना है हाँ पीना है
0: वाह बढ़िया वाह वाह वाह
1: खाने के पहले चाय सोने के पहले चाय उठने के बाद चाय खाने के बाद चाय सब चाय चाय चाय चाय चाय
0: चाय ही चाय चाय ही चाय
1: चाय बोलो चाय बोलो चाय बोलो चाय बोलो
0: अब जैसे कि मैं जब भी इंडियन रेलवे में ट्रैवल करता था तो एक चीज साउंड जो मुझे बहुत पसंद थी जब वो नहीं सुनता था तो मुझे बहुत अजीब लगता था वो था चाय
1: चाय ले लो चाय ले लो चाय
0: ये बहुत ही वो था बहुत सारे लोगों को जो है ये काफी नॉस्टैल्जिक लगेगा क्योंकि भाई बचपन से जब हम जाते थे ट्रेन में दिल्ली से केरला जाते थे तो ये साउंड बहुत रहता था
1: एग्जैक्टली यार मैं आपको एक बहुत वियर्ड चीज बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना बचपन में हम जब ट्रेन से बहुत ट्रैवल करते थे ना तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि वाओ ये भैया को जो है पूरे दिन चाय पीनी मिलती है ये भैया तो जब चाहे तब अपना ये ऐसे कंटेनर में से चाय निकाल के पी सकते हैं वाओ मुझे भी चाय वाले भैया बनना था
0: बढ़िया यार बढ़िया देखिए हमारे ख्वाब भी अलग होते हैं ना बचपन में हमें पता थोड़ा ना होता है
1: फिर पता नहीं होता फिर एक दिन जो है अपने मन से अच्छी चाय बना दी घर पे और उस दिन के है और आज का दिन है हर रोज मुझे ही चाय बनानी पड़ती थी
0: बहुत बढ़िया मैंने एक बार बनाई थी उसके बाद से मैंने छोड़ दिया बनाना मैं उसके बाद से घर नहीं गया
1: ठीक है एक बार गंदी चाय बनाओ कोई बोलेगा ही नहीं चाय बनाने
0: नहीं मैंने बहुत अच्छी बनाई थी उसके बाद से मैं घर नहीं गया तो मैंने बोला कि नहीं भाई ये रिस्क नहीं लेना अपने बट यहाँ पे एक चीज हम जो है आपसे पूछना चाहेंगे हम सब चाय पीते हैं चाय बनाने के लिए चाय पत्ती डालते हैं वो चाय पत्ती कहाँ से आती है एक पौधे से आती है तो उस प्लांट का नाम क्या है ये आपको बताना है ठीक है आप उसका साइंटिफिक नेम जो है हमें बता सकते हैं वो सी से शुरू होता है ठीक है
1: जिसका नाम चाय पौधा नहीं है
0: चाय पौधा मत बोल देना चाय प्लांट मत बोल देना सी से शुरू होता है एक बहुत ही बढ़िया नाम है आप उसे गूगल कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं उसके बाद 3311063 पर और यहाँ पे सही सवाल अगर इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया कुछ मिल सकता है
2: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
3: ब्रॉट टू यू बाय
2: Salt Mango Tree. Authentic taste. Great ambience. Matar Kadeem. Call 5164-8000. Salt Mango
0: Tree. तो सवाल आपके लिए फिर से मैं पूछ देता हूँ ये जो चाय पत्ती हमें मिलती है जिस पौधे से उस पौधे का नाम क्या है आपको बताना है अभी फिलहाल इस जबरदस्त बात के साथ एक गर्मा गर्म चाय पी गर्म आते हैं आप जबरदस्त हिट एंजॉय कीजिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है
5: Zabardast hit.

0: भाई बिल्कुल सही बात कही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कों के दिल में जो अल्फाज है, जो जज्बात है, उसको इस गाने से जो है बयां किया गया है, मगर उसके बावजूद भी जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर कुछ लिया गया है वो
1: तो मजे लिए गए हैं।
0: हाँ बस बिल्कुल सही बात कही है आपने।
1: गाने के मजे लिए गए हैं और कुछ नहीं कहा गया।
0: हाँ गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 9:32 हो रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने सवाल पूछा था कि चाय पत्ती जिस पौधे से मिलती है
1: उस पौधे का नाम क्या है। तो इस सवाल को पूछने के बाद मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई जैसी ब्लैक बोर्ड स्टोरी में आम का साइंटिफिक नाम नहीं पूछा था सुदेव ने कि यार आम इतना फेवरेट है आपका, आम इतना पसंद है तो चलो उसको साइंटिफिक नाम बताओ। यार हम चाय पीते हैं, हम डेली चाय पीते हैं, लेकिन चाय पत्ती के पौधे का नाम ये नहीं पता यार।
0: ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई देखो बुरा फील करने वाली बात नहीं पता भाई, जरूरी थोड़ी ना हर चीज में पता हो, है ना।
1: लेकिन अगर पता चल जाएगी
0: उसमें भी
1: तो वो तो अच्छी बात है। देखो यार जैसे चार लोगों के सामने जो है नेक्स्ट टाइम जो है चाय पीते पीते आप ये फ्लेक्स कर पाओगे, देखो मुझे ना ये पता है कि ये कौन से प्लांट से आता है।
0: या फिर अगले डेट में जब तुम बोल सकते हो कि आप पता है कि अगर लड़की को चाय पसंद है तो आप बोल सकते हो आपको पता है कि चाय पत्ती को क्या बोलते हैं।
1: मैं तो 100% इम्प्रेस हो जाऊँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाय के बारे में आपने कोई फैक्ट दे दिया मुझे, बस खुश हूँ मैं तो।
0: हमारे सिर्फ कैलेंडर में और जार में ही डेट्स रखे रहते हैं मगर टिप देने में हम बिल्कुल कतराते नहीं है। यार यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। आसिफ भाई ने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि मेरा नाम आसिफ है, मैं मुंबई से हूँ, चपाती के पौधे का नाम है, चपाती नहीं भाई चाय। और बट उन्होंने देखिए जिस तरीके से लिखा है वो बहुत मुझे अच्छा लगा, चपाती लिखा है तो मेबी चपाती ऐसे करके, ठीक है उन्होंने क्रिएटिव
1: पत्ती लिखना चाह रहे थे।
0: हाँ चाय पत्ती लिखना चाहते थे, वो चपाती हो गया, कोई गल नहीं, फिर भी मैं इनके क्रिएटिविटी और सोचने लग गया। बहुत प्यारा दिल है मेरा वैसे। उन्होंने बोला है कमिलिया सिनेंसिस करके। उसके बाद दूसरे एक और आसिफ भाई, उन्होंने भी मैसेज किया कमिलिया सिनेंसिस करके। मोहम्मद अब्बास भाई ने मैसेज किया, उन्होंने भी बोला कमिलिया सिनेंसिस करके, और उन्होंने ये भी बोला कि कशिश को बोलना एक बार एपी दिलों फिर से बोले करके।
1: एपी दिलों, इसमें क्या है एपी दिलों।
0: ठीक है, लिजी ने भी मैसेज किया कमिलिया सिनेंसिस करके। कमरिनिसा जी ने मैसेज किया, उन्होंने भी सही जवाब दिया है और हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन दिया है कैमेलिया साइनेंसिस करके। वाह
1: पता है कि उनकी जो बच्ची है वो नहीं बोल पाएगी। सो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये मेरी मौसी जी हैं जो इंडिया से बैठकर मेरा शो सुनते हैं और सारे आंसर देती हैं, तो इन्हें पता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी कैमेलिया
0: साइनेंसिस।
1: चाय बेस्ट है यार,
0: चाय काफी
1: चाय ला दो
0: चाय पत्ती।
1: वैसे हमारे यहाँ ना चाय भी नहीं बोलते, हमारे यहाँ जस्ट जनरली बोलते सर बहुत दुख रहा है, देर हो गई है।
0: मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा एक प्रचलन है, क्योंकि जाकिर भाई का एक स्टैंड अप मैं देख रहा था, वो भी बता रहे थे कि भाई हमारे वहाँ पे ना सटीक सवाल नहीं होते कि पानी चाहिए ये चाहिए यही बोलता है,
1: कुछ लेंगे आप
0: पानी पिला दो
1: पानी। हाँ हमारे भी ऐसी होता है, हमारे हिंट्स ड्रॉप किए जाते हैं, सर बहुत दुख रहा है, बहुत देर हो गई ना बैठे हुए, तबीयत अच्छी सी नहीं लग रही है, कुछ खराब सा लग रहा है, जी अच्छा सा नहीं हो रहा है,
0: कुछ ना ऐसे
1: कमी सी लग रही है,
0: नहीं आ रही है, स्वाद नहीं आ रहा, क्या स्वाद नहीं आ रहा,
1: कुछ भी होता है हम चाय पीने चले जाते हैं। वी आर सो मच इनटू चाय कि हमारे जो है बॉडी में थोड़ा सा खून है, बहुत सारी चाय।
0: बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है। और यहाँ पे राफत भाई का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम भाई गुड मॉर्निंग। और उन्होंने आसिफ भाई ने एक और मैसेज पूछा है, भाई एक सवाल, आप दिल्ली से केरला से क्यों जाते थे। मैं जी केरला में पैदा हुआ हूँ, मैं केरला से हूँ, मैं रहता दिल्ली में था इसलिए मुझे जाना पड़ता था वेकेशन में, इसलिए आना जाना होता था। और उसके अलावा हमें बेबी का मैसेज आया है, बेबी ने भी लिखा है कि प्लांट इज कॉल्ड कैमेलिया साइनेंसिस करके। वाह, और मेहरुनिसा जी ने भी यही जवाब दिया है और मुशीर आलम भाई ने भी यही मुझे मैसेज किया है, और उन्होंने लिखा है कि मैडम चाय तो मैं ऐसी बना जाऊंगी जो एक बार पीता है फिर बार बार पीता है। बहुत बढ़िया भाई,
1: देखिए अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो मुझे अपने चाय का असली प्यार जो है वो आपको बताना पड़ेगा। कल मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मैं उसमें टी पॉजिटिव निकली, आपको पता है।
0: हाँ बहुत ज्यादा
1: मेरा ब्लड मेरा ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव हो चुका है,
0: टी पॉजिटिव हो चुका है
1: और लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है।
0: क्या बात कर रही
1: है, सारे वर्ड प्ले जितने इंस्टाग्राम पे देखे हैं मैंने कैप्शन डालने के लिए सब अभी बोल
0: इतना बोल दिया कि अब टीड़े के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, टीड़े में हम कुछ नहीं बोलेंगे गाइस। बढ़िया, यहाँ पे बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। अब विनर्स को जो है हम अभी सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। जो भी विनर सेलेक्ट होगा उसको सीधा हमारे ऑफिस से जो है कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं लेना, जो भी विनर होंगे उनको सीधा हमारे ऑफिस से कांटेक्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे गजेंद्र वर्मा की आवाज में टेबल नंबर 21 का गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिद्दास।
0: और थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जो भी विनर बनेगा ऑल द बेस्ट, और नहीं बने तो दिल छोटा नहीं करते प्यारे।
1: चल।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गुप्त मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज पर।
1: yes.
0: उसमें हमने एक पोस्टर डाला हुआ है, उस पोस्टर के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसे फॉलो कीजिए, शायद कुछ बहुत ही खास आपको जो है वहाँ पे मिल सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इंतजार किस बात का है आपका, तो जल्दी जल्दी जल्दी जो है आप जाइए इंस्टाग्राम पे,
1: जाइए जाके लाइक कीजिए, वहाँ पे जो भी लिखा है वो पढ़िए और फिर उसमें अपने व्यूज जो है वो दीजिए। हो सकता है अमेजिंग वाला कुछ सरप्राइज आपको मिल जाए,
0: बिल्कुल,
1: या कुछ
0: बिल्कुल
1: नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मिल जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं तो हमारी वीडियोस तो मिल ही जाएंगी, देखिए वहाँ पर।
0: बिल्कुल।
2: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
3: ब्रॉट टू यू बाय
2: Salt Mango Tree, authentic taste, great ambience, Matar Kadim, call 5164-8000।
0: तो भाई यही बात करते हुए हम जरा निकलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, अब मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी सीट में। हम दोनों आएंगे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए। तो जाएं
1: तो बस हम चलते हैं, आप बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौली हौली चलाइएगा, पानी पीते रहिएगा और बाकी सोशल मीडिया पे आ जाइए, बातचीत जारी रखेंगे। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और
0: कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
4: This hour is brought to you by
5: Homes R Us. We complete your home.

गुड मॉर्निंग और वेलकम है आपका लाइफ मस्त है में। नया वीक ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और संडे का सबसे इमोशनल रिलेशनशिप किससे होता है? अफकोर्स स्नूज बटन से। अलार्म बजता है और ब्रेन बोलता है बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब डायरेक्टली 35 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन साइकोलॉजिकली फ्रेश स्टार्ट को बहुत सीरियस लेता है, चाहे वो हमारा नया वीक हो, न्यू ईयर हो, बर्थडे हो, न्यू मंथ हो, सब कुछ उसको बहुत ही मोटिवेशनल लगता है। सो ब्रेन को लगता है कि अब लाइफ जो है वो रीसेट हो गई और रीसेट की ज़रूरत भी होती है क्योंकि आजकल हम फिजिकल ज़्यादा काम नहीं करते, मेंटली ज़्यादा ओवरलोड रहते हैं। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजंस, ओवरथिंकिंग, यही सब चलता रहता है हमारे दिमाग में। सो सब कुछ ना एक साथ चल रहा होता है और इसी बीच में हम खुद को पॉज नहीं देते। तो आज का स्मॉल रिमाइंडर क्या है, आपको परफेक्ट वीक नहीं चाहिए, पीसफुल वीक चाहिए। छोटी छोटी जो विंस होती है ना उनको आपको यू नो सेलिब्रेट करना है। ऑन टाइम उठ जाना, पानी ज़्यादा पीना या फ़ोन को थोड़ा सा कम यूज़ करना। एंड आई विल से कि मैं भी बस यही सब ट्राई कर रही हूँ। सो आई विल से कि दोनों मिलकर ट्राई करते हैं, मतलब एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा। और इसी के साथ आज नई शुरुआत करते हैं। आई हैव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू टेल कि भाई फ्राइडे सैटरडे को क्या नया हुआ, कतर में क्या चल रहा है, आपने क्या क्या किया, सब कुछ बातें करने के लिए मैं हूं यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव 106.3 FM और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: दोहा में जीसीसी गेम्स ऑफिशियली कतर के नाम हो रहा है, ठीक है। टीम कतर अभी तक टोटल 82 मेडल्स जीत चुकी है, मतलब 30 गोल्ड, 26 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, और ये डोमिनेंस काफी इंप्रेसिव है। स्विमिंग, एथलेटिक्स, फेंसिंग, बिलियर्ड्स, शूटिंग, एवरीवेयर। यू नो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। हर साइड कतर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है भाई, और सबसे इंस्पायरिंग क्या है कि जो मुताज हैं उनका कमबैक ऑलरेडी इमोशनल हाईलाइट बन चुका है। उनको एक इंजरी हुई थी कुछ टाइम पहले, और इंजरी के बाद जब वो फिर से वापस आए और फिर से गोल्ड मेडल मिला, तो भाई सब हर कोई मतलब इमोशनल हो गया। चैंपियन सिर्फ जीतते नहीं हैं, एक्चुअली कमबैक भी करते हैं। और जीसीसी गेम्स का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। कंपटीशन होता है, लेकिन गल्फ यूनिटी भी फील होती है, और इसीलिए स्लोगन भी यही है, वन गल्फ वन हार्ट। और कतर का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्लियरली इवॉल्व हो रहा है। पहले फोकस ना लिमिटेड स्पोर्ट्स पर था, अब मल्टीपल डिसिप्लिन में एथलीट वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट ना मेडल से ज़्यादा होता है। सो यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलती है, लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली उनका करियर यहाँ भी हो सकता है, और एक डिफरेंट टाइप की चीज़ें फील होती हैं। सो आप मुझे बताओ कि जब कोई गेम्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं, तो आप कौन सा यू नो स्पोर्ट्स सबसे पहले पसंद करते हो। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

कभी कभी ना आई टॉक अबाउट वेरी रोम कॉम टाइप बुक, और कभी कभी इतनी ज्यादा इमोशनली हेवी किताब मैं लेकर आ जाती हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि इसको कैसे यू नो एक्सप्लेन करना है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, और किताब का नाम है 1000 Splendid Suns. अगर आपने द काइट रनर का नाम सुना है तो सेम ऑथर की ये किताब है, और ये सिर्फ नॉवल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है. स्टोरी जो है वो बैकड्रॉप में स्टार्ट होती है और विमेन की लाइफ्स को फॉलो करती है. पेन, फ्रेंडशिप, सर्वाइवल, होप, सब कुछ है इस किताब में. सब बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है एक दूसरे से. और बुक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन रेजिलेंस. यू नो, कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी लोग सर्वाइव करते हैं इमोशनली. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बुक जो है वो हर चीज़ यू नो होने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी होपलेस फील नहीं होती, इट फील्स ह्यूमन. और एक लाइन बहुत फेमस है इस किताब की कि मैरिज कैन वेट, एजुकेशन कैन नॉट. So, ये मतलब मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया, सो आई थॉट क्यों ना आपको भी बताऊं. सो अगर आप भी ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो यू कैन रीड. बाय द वे, मैं कुछ आज ऐसी किताबों की बात करूंगी जो यू नो पहले रिजेक्ट हुई, जिसे लोगों ने, किसी पब्लिशर ने, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में भाई हर किसी ने उसकी यू नो कॉपीज निकाली हर लैंग्वेज में. वी विल टॉक अबाउट दैट बुक ऑल्सो. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
0: रेडियो

चलो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। एवरीडे आई टॉक अबाउट बुक और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप लोग, कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ योर फर्स्ट बुक, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सो आपको पता है कि वर्ल्ड की कुछ बिगेस्ट बुक्स जो हैं वो इंस्टेंटली रिजेक्ट हो चुकी हैं। मतलब एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन, मतलब 12 पब्लिशर्स ने इन्हें रिजेक्ट किया था। कैन यू इमेजिन? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। आज बिलियंस की फ्रेंचाइजीज हैं और शुरू में ये लोग बोल रहे थे कि ये नहीं चलेगी। और एक और फैक्ट है कि ओल्ड बुक्स की स्मेल ना साइंटिफिकली रियल होती है। पेपर और इंक जो है वो ब्रेक डाउन की वजह से वनीला टाइप स्मेल क्रिएट करता है और इसीलिए बुक लवर्स जनरली बुक स्मेल करते हैं। और दुनिया की ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी है। मतलब ह्यूमंस की स्टोरी टेलिंग ऑब्सेशन एंशंट है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, स्टोरीज का मैजिक नहीं चेंज हुआ। आज भी लोगों को किताबें पढ़ना उतना ही पसंद है, आज भी लाइब्रेरी कल्चर उतना ही फेमस है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो और बात करेंगे मैचेस की। बाय द वे कल कौन कौन से मैचेस थे और मैंने कितने मैचेस कैसे एंजॉय किए बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

सो भाई अक्षर पटेल आज दिल्ली को जिताएंगे या फिर वैभव आज कितने सिक्स लगाएंगे, क्योंकि आज मैच होने वाला है पंजाब वर्सेस बेंगलुरु। आज दोपहर में मैच है, सो मैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। तो सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी। और कल का मैच था कोलकाता वर्सेस गुजरात के बीच में, मतलब स्कोर अच्छा था कल, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था पूरा टोटल स्कोर देख के। सो इट वॉज लाइक कोलकाता वॉज द विनर, 247 रन बनाए थे, दो विकेट के नुकसान पर, सिर्फ दो विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में। सो वी विल टॉक अबाउट दैट कि भाई आज तो बेंगलुरु वर्सेस पंजाब है, तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सो अगर मैं इस मैच की बात करूं तो श्रेयस अय्यर की टीम इस मैदान पर बेंगलुरु को पिछले 15 साल से हरा नहीं पाई है। पंजाब को आखिरी जीत जो है इस मैदान पर 2011 में मिली थी। 2024 के जो मैचेस थे उनमें भी टीम जो है वो 60 रन से हारी थी। और इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये प्रेशर का मैच कहा जा सकता है, क्योंकि बेंगलुरु लगातार दो मैच जीतकर प्लेऑफ की बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुकी है और पंजाब लगातार 5 मैच हारने के बाद बहुत प्रेशर में है। अब बेंगलुरु ने उसे पिछले सीजन में 3 बार हराया था। अब आज क्या होगा ये तो मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। मैच शुरू होने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। बाय द वे, विच इज योर फेवरेट टीम? 3311063 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। और बात करेंगे कि कोहली जो है बेंगलुरु के टॉप स्कोरर हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सुन रही रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो आज के मैच की बात हो रही है एंड अगर मैं बात करूं विराट कोहली की तो बेंगलुरु के टॉप स्कोरर है. उन्होंने 12 मैचेस में 165.75 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए. वो आज पूरे 500 रन पूरे कर सकते हैं बाय द वे, एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. विराट ने पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ 60 बॉल पर नॉट आउट होकर 105 रन बनाए थे और भुवनेश्वर कुमार ने 22 विकेट के साथ टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में नंबर वन अपना नाम बना लिया था. तो आज के मैच में एक्चुअली बैंगलोर का जो सबसे अच्छा बैटर है वो विराट कोहली है और बॉलर में भुवनेश्वर कुमार है. सो आज के मैच बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. और पर आप मुझे बताओ कि आपको कल का मैच कैसा लगा, कोलकाता वर्सेस गुजरात वाला, जिसमें कोलकाता ने इस मैच को जीत लिया. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

यार yesterday I was watching some pictures from Torba Market और मुझे लगा कि यार मैंने अभी तक ये क्यों नहीं देखा है, पर इसका एक रीजन है कि सिर्फ सैटरडे को होता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अगर आपने भी तोबा मार्केट विजिट नहीं किया है तो ऑनेस्टली एक वाइब आपने भी मिस किया है और मैंने भी, मतलब पिक्चर्स देख के ऐसा लगता है। बाय द वे ये सिर्फ एवरी सैटरडे होता है पर्ल आइलैंड पर तोबा मार्केट 5 PM टू 9 PM, और अगला मार्केट जो है वो नेक्स्ट सैटरडे ही होगा। मतलब यस्टरडे वॉज देयर बट कल बस मैं पिक्चर्स ही देख पाई, जा नहीं पाई। सो ये पूरे महीने मई का जो पूरा महीना है इसमें जितने भी सैटरडेज हैं पूरे सैटरडेज लगने वाला है। सो वी विल ट्राई कि भाई हम एक सैटरडे जरूर वहाँ पर जाएं। बाय द वे इट्स मोर लाइक कम्युनिटी फेस्टिवल, फूड एक्सपीरियंस, एस्थेटिक इवनिंग। वहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक फूड मिलता है, लोकल ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर, कॉफी स्टॉल्स होते हैं और सब कुछ होता है। और ऑनेस्टली कतर का क्रिएटिव साइड वहाँ काफ़ी विजिबल होता है। सो तोरबा जो है वो सस्टेनेबिलिटी और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करता है, और मतलब स्मॉल क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है और एटमॉस्फेयर भी काफ़ी कोजी होता है। लाइट्स, म्यूजिक, सी ब्रीज और प्योर पिंटरेस्ट वाइब होती है। सो उसके जब भी मैं पिक्चर्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, कोई भी अगर तोरबा मार्केट गया होता है और पिक्चर्स पोस्ट कर रहा होता है तो मुझे लगता है यार मैं इस बार क्यों नहीं गई, पर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सैटरडे आई विल ट्राई टू गो। पर अभी के लिए आई विल से कि आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और मुझे बताइए कि आपने तोरबा मार्केट विजिट कर लिया है। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

So, कतर में जो जुलाई है वो बच्चों के नाम होने वाला है. कतर टॉय फेस्टिवल 1st of July से 31st of July तक DECC में होने वाला है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है लाइफ मस्त है. बाय द वे, मैंने कभी पहले इसको अटेंड नहीं किया है और ऑनेस्टली इवेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट भी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि मॉडर्न टॉय फेस्टिवल्स अभी इंक्लूड करते हैं इमर्सिव जोन्स में गेमिंग एक्सपीरियंस, कैरेक्टर वर्ल्ड और लाइव शोज, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज. और कतर जो है वो धीरे धीरे फैमिली एंटरटेनमेंट हब बनता जा रहा है. स्पेशली समर सीजन में इंडोर मेगा इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वेदर नेचुरली चैलेंजिंग होता है और बच्चों के लिए मेमोरीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइल्डहुड का ना बेस्ट पार्ट टॉयज नहीं है, एक्चुअली एक्साइटमेंट होता है. बच्चे जो टॉयज होते हैं उससे तो 2-4 दिन में बोर हो जाते हैं, पर बेसिकली जब वो कुछ नया सीखते हैं, जब वो कुछ नया देखते हैं, तो बेसिकली वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. So, जुलाई आते ही मैं आपको इसके सारे अपडेट

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2020.

0: 6 million riyals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 riyals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: ओके बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा
2: बस चल

0: कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है,
1: व्हाट अबाउट यू? हाय लिख के दूं क्या?

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Now, this hour dedicated to fully dehydration or garmi. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. अगर आपको समर्स में बॉडी पेन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वर्कआउट की वजह से हो रहा है. इट कुड एक्चुअली बी डिहाइड्रेशन. कतर की हीट में बॉडी कंटिन्यूसली वाटर लूज करती है और सिर्फ पानी नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. और इम्बैलेंस होने पर मसल्स पेन, क्रैम, फटीग, हेडेक, मतलब ये सब इंक्रीज हो जाता है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन को सीरियस नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है प्यास फील होने तक बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड फील करेगी. मतलब उनको लगता है कि प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे, पर ऐसा नहीं है भाई. प्यास लगने तक का वेट नहीं करना है. इसीलिए एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क, इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक, ये सब ना इस मौसम में बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है जो कतर में बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं उनको तो पता है कि एक्चुअली ये सब कैसे करना है. स्पेशली समर्स में डिहाइड्रेशन लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल टूल है गल्फ समर्स में. एंड आई विल से कि अगर आपको लग रहा है कि भाई हीट सिर्फ डिहाइड्रेशन तक ही लिमिटेड है तो नहीं, वो आपकी नींद को भी इफेक्ट करती है. कैसे बताती हूँ अभी थोड़ी देर में. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

सो आजकल नींद ना प्रॉपरली क्यों नहीं आ रही है, उसका रीजन सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, टेम्परेचर भी है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. अब आपको लगेगा यार गर्मी बाहर है अंदर, वो तो एसी का टेम्परेचर एकदम कंट्रोल्ड है, पर नेचर की अगर मैं बात करूँ तो जर्नल एक नेचर जर्नल स्टडी है जो कहती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से डीप स्लीप डायरेक्टली इफेक्ट होती है और डीप स्लीप बॉडी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च सजेस्ट करती है टेम्परेचर राइज के साथ स्लीप डेफिशिएंसी का रिस्क इंक्रीज होता है, स्पेशली हॉट कंट्रीज में और कतर समर्स में इशू और ज़्यादा कॉमन हो जाता है. बॉडी ऑलरेडी ओवर हीटेड फील करती है, हैवी डिनर, फोन स्क्रॉलिंग, लेट नाइट कैफीन और प्रॉब्लम इंक्रीज कर देती है. और मॉडर्न स्लीप का बिगेस्ट एनिमी क्या है, स्क्रीन लाइट. ऑफ कोर्स वो तो है ही, पर इसी के साथ गर्मी भी है. हम फिजिकली बेड पर होते हैं पर मेंटली इंस्टाग्राम पर. इसीलिए स्लीप एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि कमरा जो है वो प्रॉपर अच्छे से ठंडा होना चाहिए, लाइट बहुत कम होनी चाहिए, डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए, लेस स्क्रीन टाइम और हाइड्रेशन. मतलब सोने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि आप अगला दिन फ्रेश फील करो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो आज का लास्ट थॉट कि हर वीक ना परफेक्ट नहीं होता, और आज तो नया वीक स्टार्ट हुआ है तो मैंने सोचा पहले ही बता देती हूँ कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा. और सच बात यह है कि इट्स ओके यार, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. देखो नया वीक स्टार्ट हो गया है, आज है संडे, और आज की जनरेशन ना लगातार प्रेशर में रहती है कि बेटर करियर बनाना है, बेटर बॉडी, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर एवरीथिंग. लेकिन कभी कभी लाइफ का बेस्ट फीलिंग क्या होता है? बस थोड़ा सा सुकून. सो इस हफ्ते थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा हाइड्रेट करिए खुद को, और थोड़ा खुद पर भी इजी रहिए यार, क्योंकि लाइफ कंपटीशन कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगती है. सो आई विल से कि भाई आज का तो मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, बट कल सुबह और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं यहाँ पर आ जाऊँगी. आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 3311063. ये है रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास. Radio

शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम. मैं हूँ जैकी श्रॉफ.
4: जैकी श्रॉफ
3: रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: रेडियो ऑलिव नंबर वन.
7: ऑलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। मॉर्निंग

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल

0: Tanisha.
1: Tanisha, beautiful rendition only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aage ji aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon, meri jaan. Hoy hoy, this beautiful track.
2: Apun bola, tu meri lela.
1: Fitter sala, Josh movie se ye gana. और सरम की आवाज में दिल के चैन का ये नया वाला रेंडिशन
2: बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है कोई उसे ढूंढ के लाए
1: जी जी बिल्कुल अभी तो हफ्ता शुरू हुआ ही है और दिल भी खो दिया इन्होंने लव दिस ट्रैक ऑल दीस अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर और ढेर सारे सरप्राइजेस भी हैं कॉन्टेस्ट भी खेलना है हमें जी हाँ इंटरनेशनल टी डे बहुत नजदीक है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले जानेंगे आपके हाल चाल कैसे हैं आप हाउ हैज द डे बीन सो फार संडे में 17th कैसा ट्रीट कर रहा है आपको लंच वंच हो गया कि नहीं नींद छींद आ रही है तो बताओ जरा मैं अभी उसका हल निकाल दूंगी बढ़िया सा गाना चला के आ रहा है रूप दी रानी गुरु रंधावा और हीर की आवाज में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव जीओ बिंदास

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और एक बहुत important बात मैं आपसे अभी करने जा रही हूँ जो कि ये हमारे हफ्ते का पूरा जो मूड है ना वो सेट करके रख देगा जी हाँ सो गौर से सुनिएगा एंड इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अपने दिमाग में इसे बिठा लो कि मेरी जान यू आर लाइक द सजरा सवेरा पार्ट इन कुन फाया कुन आने वाला है वो गाना भी कुछ ही देर में एंड डू नॉट लेट पीपल ट्रीट यू लाइक लव स्टोरी अपार्ट फ्रॉम केसरिया कितना केओस हुआ था जब वो गाने की छोटी सी ग्लिम्स आई थी एंड वी हर्ड कि उन्होंने लव स्टोरियाँ बना दिया केसरिया से यू नो राइम करने के लिए तो वैसे बिल्कुल भी अपने आप को ट्रीट नहीं करने देना किसी को आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप बहुत अमेजिंग हैं खुद को रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे दैट्स हाउ यू गोना टेल पीपल दिस इज हाउ आई ट्रीट माई सेल्फ इससे कम कुछ बर्दाश्त नहीं होगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जान सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट इफ यू वरंट और अगर कर रहे थे तो वेल एंड गुड जी सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव सेंडिंग कुन फायर कुन टू यू विद

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. And bhai, Qatar dominate kar raha hai full on, you know, medal standings mein at Gulf Games Doha 2026. 82 medals ab tak jeet chuke hain. So jitni bhi Gulf countries isme participate kar rahe hain, top pe apna Qatar chal raha hai. And I feel so proud while telling you guys that. Aur abhi ye games jo hain चल रहे हैं, फोर्थ डे तक 82 मेडल्स हो चुके थे. अब आगे देखते हैं और कितने अपने पास आने वाले हैं. सो फार देर हैव बीन 30 गोल्ड मेडल्स, 26 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल्स, एंड कंटिन्यू है. तो आगे भी और बहुत सारी ऐसी बढ़िया सी खबरें हमें सुनने को मिलेंगी. एंड फिलहाल बढ़िया सा गाना सुनते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.
0: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: सर क्या पर ये बात है.
0: Cool song.

0: तनिषा
1: जुल्फी और फारिश शाफी की आवाज में ब्लॉकबस्टर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ज चल रहा है यहाँ पर और ब्लॉकबस्टर टाइप्स की हवाएं चलने वाली है ऐसा मेट डिपार्टमेंट ने कह दिया है. वेदर अलर्ट भेज दिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होने वाली है, डस्ट होगा, हाई सीज. सो जरा अपना ख्याल रखिएगा वेन एवर यू आर ड्राइविंग, ठीक है. ज्यादा स्पीड में ही चलाने का है और फोन वोन तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है. ये ड्राइविंग वाली तो वार्निंग हमेशा है क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना ख्याल रखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है. सो आराम से चलाइए अपनी गाड़ी को और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लाइक फोन एंड ऑल यूज करते हुए बिल्कुल ना चलाएं, ठीक है मेरी जान. कहीं रुक जाए, कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ रहा है तो रुक के बात कर लीजिए. मुझे मैसेज करना है तो जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तब करें ना, मैं इंतजार कर लेती हूँ. नंबर बता देती हूँ बस 3311 1063. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है. फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा

0: तनिषा
1: तनिषा दिल धड़कने दो मूवीज की टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलरेडी चार्ज चल रहा है यहाँ पर और दिल धड़कने दो पर आजकल लोग सिखाने लग गए कि बर्गर कैसे खाना है यार ये कोई बात हुई भला सो आई सॉ अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड देर इज एक्चुअली अ स्कूल जहाँ पे जो प्रोफेसर है वो सारे बच्चों को ऐसे टेबल पे बिठा के नॉट बच्चे यू नो लाइक द एडल्ट्स एंड वो उनको सिखा रही है कि बर्गर कैसे खाना चाहिए कैसे थ्री फिंगर्स शुड बी यू नो अपवर्ड्स एंड थंब और लिटिल फिंगर जो नीचे होना चाहिए उसको संभाल के रखने के लिए एंड हमेशा रैपर उसके अराउंड रैप रहना चाहिए सो दैट जो भी सॉसेस है वो नीचे ना गिरे एंड इट डजंट लुक शैबी व्हाइल यू आर ईटिंग एंड आई वॉज लाइक रियली डू वी नीड टू लर्न दिस ऑल्सो बट शी डिड नॉट टेल मैं एक्चुअली वो वीडियो पूरी देख रही थी एंड शी डिड नॉट टेल कि जब वो आप टमेटो का आधा स्लाइस कट कर लेते हैं और वो बचा हुआ लटक जाता है वहाँ पे यू नो इट्स जस्ट हैंगिंग देयर थ्रू द बर्गर एंड बिटवीन योर माउथ वो नहीं बताया उन्होंने कि कैसे हैंडल करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा पिक्यूलर चीज़ तो वही होती है या फिर जब लेटस गिर जाए तो कैसे उसको आप उठा सकते हो कि नहीं या फिर उसको आपने वहीं रहने देना है व्हाट डू यू डू तो ये सब तो नहीं बताया उन्होंने और जितनी देर में उन्होंने ये बताया है दो बर्गर ख़त्म हो जाएंगे इंसान के I'm telling you. आप बताइए मुझे would you be interested in joining such classes to know how to eat a burger? 3311063 पर मैसेज कीजिए बताइए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. You are my Sonia. Alka Yagnikar, Sonia Gom ki awaaz mein kabhi khushi kabhi gham se ye gaana suna aapne. And I found out few words jo ki kuch aisi feelings ko express karte hain jo ki hum sab feel karte hain but we did not know there are, you know, words for that. So जब भी आप किसी पर्सन को लाइक बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है से, एंड यू नो दैट पर्सन फॉर रियली लॉन्ग टाइम, और आपको एकदम से ये रियलाइज होता है कि यार नो मैटर हाउ लॉन्ग आई नो दिस पर्सन, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा. देयर विल बी अ मिस्टीरियस थिंग अबाउट दिस पर्सन आई विल नेवर नो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फीबी को लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपने देखा है तो फीबी आप सब कुछ नहीं जान सकते उस लड़की के बारे में. वो कभी भी क्या बोल देती है, कभी भी क्या कर देती है, वी कैन नेवर प्रेडिक्ट, यू नो, वेरी अनप्रेडिक्टेबल. एंड दैट फीलिंग व्हेन यू फील फॉर समबडी इज कॉल्ड नोसिने. जी, द स्पेलिंग इज GNOSSINNE. नो सिने, यस. एंड आई थिंक ये चीज हम काफी लोगों के लिए अपने आसपास जो है उनके बारे में ये फील कर चुके होंगे ऑलरेडी, नहीं? सो टेल मी हु इज दैट वन पर्सन यू हैव फेल्ट नो सिने अबाउट. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड. एंड जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Letter to her, Kuwar ki awaaz mein only on radio, Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Recharge chal rahe hain yahan par. वैगी विजडम में आज बात करते हैं इंस्टाग्राम की. नई नया अपडेट नहीं बताने वाली हूँ उनका, हर रोज आ जाता है आई नो, पर आज हम उसके शुरुआती दिनों की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे. सो बेसिकली इंस्टाग्राम जो था, इट स्टार्टेड एज बर्बन, BURBN ये इसका नाम था, एंड इट यूज टू बी अ चेक इन ऐप. आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, यू नो, लोकेशन शेयर कर सकते थे और उस लोकेशन की फ़ोटो शेयर कर सकते थे. दैट वॉज द ओनली पर्पज़ ऑफ इंस्टाग्राम इनिशियली. पर जो केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर थे, उन्होंने नोटिस किया कि यार लोगों को ना फोटोज़ की ज़्यादा पड़ी है, लोकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि हम फ़ोटो देखें. देन दे वर लाइक, चेंज कर दो सब कुछ, जो मेन पर्पस से हमने ऐप बनाई थी वही चेंज कर दो, इसको सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप बना दो. एंड देन वी हैव इंस्टाग्राम. और अब इसने क्या क्या बवाल मचा रखा है, वी ऑल नो दैट वी आर एडिक्टेड, है ना. सेंडिंग आदित्य रिखारी की आवाज में, ए अजनबी ओनली ऑन रेडियो ऑलिव, ट्रियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 million riyals ड्रीम बिगर

0: एजेंट विनोद से दिल मेरा मुफ्त का है, बहुत ही बढ़िया गाना एंड करीना कपूर ने जिसमें डांस किया है, मजेदार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, तनीषा आपके साथ। ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहां पर। लेम जैम्स का जो आज का मेरा सवाल है, उसका अगर सही जवाब आपने दे दिया तो 21 मई को जो इंटरनेशनल टी डे है उस पे रेडियो आलू के आरजेस के साथ चाय पीने का मौका आपको मिल सकता है। हाँ जी,
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक टेस्ट, ग्रेट एम्बियंस एंड बजट फ्रेंडली। मतार कदीम, कॉल 5164800।
0: यस, सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट पे हम 21 मई को साथ में चाय पी सकते हैं अगर आप मेरे इस लेम जैम्स के सवाल का सही जवाब दे दें। सो सवाल ये है, ऐसी कौन सी चाय है जो हम सबको पीने को मिलती ही है लाइफ में, वेदर यू लाइक टी और नॉट इट डजेंट मैटर, बट ये वाली जो चाय है, टी है, ये हम सबको लाइफ में पीने को मिलती है। कौन सी टी है? डू नॉट गो यू नो लिटरली, लॉजिक में नहीं जाने गए कि चायों के नाम देखने लगे, चायो इज नॉट अ वर्ड। जितनी भी यू नो टाइप्स ऑफ टीज होती हैं वो देखने लगे, मत जाना वहाँ पे, ठीक है? सोचो जरा, ऐसी कौन सी चाय है जो हम सबको लाइफ में मिलती ही है। 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर। स्टे ट्यून्ड, जुबिन दास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi everyone, this is Benny Deol here.
7: Benny Deol here.
6: Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: Direct to say, Preet Ray in the voice of Darshan Rawal and Jonita Gandhi. Beautiful track, and what an amazing movie. If you haven't, you should watch it. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The Nisha Abke is sad. Olive Richard children. So lame jams का आज का मैंने सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चाय है जो सबको दुनिया में मिल ही जाती है. जी हाँ, whether you like tea or not doesn't matter, ये तो मिलती ही है. So I've got a few answers over here. Naeem जी का मैसेज आया, अनिकेत, रश्मि, इरफान एंड मोबाइल, इनका नाम मोबाइल लिखा हुआ है. सो गाइज, अपना जरा नाम लिख दिया करें. कभी कभी ऐसे होता है कि आपने जो अपना नाम डाला होता है, यू नो, कॉन्वर्सेशन के लिए, वो थोड़ा अजीब होता है. लाइक हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे या तो इमोजीज हैं या फिर कुछ रैंडम चीज़ें हैं. सो नाम पता चल जाता है तो बेहतर रहता है. बाकी सही जवाब आए हैं इसमें से कुछ लोगों के और कुछ लोगों के गलत, और कुछ लोगों ने नए आंसर भी दे दिए हैं तो मुझे भी नई नई चीज़ें मिल गई हैं. बट एक और मौका दे रही हूँ, बताएं मुझे कि ऐसी कौन सी चाय है दुनिया में जो सबको मिल ही जाती है, whether you want it or not. And इसका सही जवाब देंगे तो आप जीत सकते हैं एक मौका इंटरनेशनल टी डे पर ऑलिव के आरजेस के साथ चाय पीने का एट सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट.
2: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल, टी टॉक्स एंड मेमोरीज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट मैंगो ट्री. Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164-8000.
1: तो फटाफट से बताइए अपना जवाब 3311-1063 पर. ऐसी कौन सी चाय है जो सबको मिल ही जाती है. अर्सन त्रे रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.
0: Cool song.
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
0: Cool song.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज. ओनली रिचार्ज.
3: ओनली रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
2: ओनली रिचार्ज.
4: With Homes Are Us, we complete your home.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

और आ चुकी है जबरदस्त इवनिंग, शुरू हो गया वीकेंड, जो आ जाऊंगा मैं नहीं, मुझे फ्राइडे चाहिए, कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे एक बार फिर से हम अपने वीकेंड का। अभी फिलहाल के लिए आप, मेरा इंतजार खत्म हो चुका है, मतलब आपके लिए मैं बता रही हूँ कि 4 घंटे अब अपने होने वाले 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ, कहीं नहीं जाना है आपको, पूरी अटेंशन जो है वो आपको मुझे देनी है। गाने बेबी सर, आपका वीकेंड बढ़िया रहा, मजे किए, और वीकेंड के साथ साथ आज का दिन आपका कैसा रहा? 3311063 पर आपके मैसेजेस जो है वो मुझे भेज दीजिए। मैच भी चल रहा है, मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बात होगी, पहले आपके मैसेजेस आएंगे। Say, wow!

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi guys, this is Abar Chetty Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: अलका याग्निक के साथ सुखविंदर पाजी ने बवाल काट दिया गाने में। ताल फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हो, ऑल टाइम फेवरेट यार। सिमरन के साथ आप जो है वो जबरदस्त इवनिंग सुन रहे हैं। मैं क्या जी सुन रहे हो कि दादे की हालचाल। ये फिल्म याद है आपको? फिल्म तो याद होगी, क्या आपको ये गाना याद है कौन सी फिल्म से है? बिना गूगल किए मुझे बताओ ये कौन सी फिल्म का गाना है, ये जो अभी प्ले कर रही थी मैं 3311063 पर। उसके साथ साथ आई नो सुबह से लेके शाम तक बस थोड़ी देर में सारे गाने होने वाले हैं। और मैच के बारे में बात करें, राजस्थान और दिल्ली का मैच जो है वो चल रहा है। राजस्थान अभी खेल रहा है, 3.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 39 और पहला विकेट जो है वो जा चुका है। सो कौन कौन है राजस्थान से, कौन कौन है दिल्ली से, बताओ कौन किसको सपोर्ट कर रहा है 3311063 पर। एंड डोंट फॉरगेट कौन सी फिल्म का गाना है वो बताइए मुझे।
1: T20 score update presented by Brooks Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dada ki most love kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global K site, Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us, we complete.

यस बिल्कुल सही पहचाना है, दिल मुश्किल से है गाना, वो राइम हो गया यार, काफी अंडररेटेड गाना यार ये। दिल है मुश्किल जितनी फिल्म और इस फिल्म के जो बाकी अलग गाने हैं, चाहे वो ब्रेकअप सॉन्ग है, चाहे वो ए दिल है मुश्किल है ना, जितने भी सारे गाने हैं, उन गानों से ये गाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। लोग जो हैं वो इसके बारे में उतना बात नहीं करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप रेडियो ऑलिव सुन रहे हैं, तो हम आपको वो सारे गानों से अवगत करवाएंगे। ओ माई गॉड, बहुत भारी हिंदी होगी, अब मेरे से मत ये पूछना अवगत करवाए क्या होता है, मैंने कहीं पर एक बार सुना था। ठीक है, 5:36:17 स्टूडियो की घड़ी पर हो चुकी, लेकिन अब आपको अवगत जो है वो करवाने वाले एक ऐसे रेस्टोरेंट से जहां पर आपको जो है वो चाय की चुस्कियां जो है ना वो पूरी होने वाली है, सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट। अब देखो यार, जब चाय की बात आती है ना, हर किसी का अपना एक स्वाद होता है चाय का। इंटरनेशनल टी डे आ रहा है, इसलिए हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है सॉल्ट ट्री मैंगो रेस्टोरेंट में जाके, सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में जाके चाय पीने का, स्नैक्स खाने का, हमारे साथ चिल करने का, इन शॉर्ट। ओके, सो आपको मुझे बताना है, हर किसी का चाय पीने का अपना तरीका होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाय थोड़ी सी कड़क पसंद है, मीठा मीडियम है, बहुत तेज मत रखो, बहुत कम मत रखो, उसके साथ मुझे थोड़ी मसाला और अदरक जो है वो चाय में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप को अपनी चाय जो है वो कैसे पसंद है, सो आपने मुझे बताना है, इस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप टी डे लिखिए और उसके बाद अपना आंसर जो है वॉइस नोट करके भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3311063 पर इस तरह से रजिस्टर करवाइए और सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट के लिए तैयारी कर लीजिए अपनी, हमारे साथ जाने के लिए। इंटरनेशनल टी डे आ रहा है तो चाय पियेंगे यार, अकेले अकेले तो रोज पीते हो आप।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: छोटे छोटे बच्चे पागल हो गए थे इस गाने पे भाई साहब क्या। तगड़ी एक्टिंग कर रहे थे यार इस गाने पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। और सॉल्ट मैंगो ट्री रेस्टोरेंट में इस इंटरनेशनल टी डे पर हम आप में से कुछ लकी लिसनर्स के नाम चूज करके उनके साथ इस टी डेट पे जाने वाले हैं जहां पर हम चाय भी पियेंगे, स्नैक्स भी खाएंगे एंड फन भी करेंगे, मजा करेंगे, बातें करेंगे। सो उसके लिए आज कल परसों हम दो तीन दिन जो है वो बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों की तरफ से ले रहे हैं। सो मेक श्योर कि जब भी हम इस टी डे के बारे में करें तो आप जरूर पार्टिसिपेट करेगा। अभी भी जब थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि आप लोगों को कैसी चाय पसंद है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। सो जिन जिन के मैसेजेस आए आप सबके नाम जो है मैंने नोटिस कर लिया, लेकिन वो कौन लकी लिसनर होने वाले हैं सो आप हर शो में सुनिए और हम आपको बताएंगे कि वो कौन से लिसनर होने वाले हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं। बट पार्टिसिपेट कर लीजिए।
1: इंटरनेशनल टी डे स्पेशल टी टॉक्स एंड मेमोरीज
2: ब्रॉट टू यू बाय Salt Mango Tree Restaurant. Authentic taste, great ambience and budget friendly. Matar Kadeem. Call 5164

यानी कि आप दोस्तों सुनियो की दादी की हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर तुहाडे नाल 6:26 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। इतना क्यूट गाना यार, बस थोड़ी देर में ये गाना सुनेंगे, लेकिन मौसम तो कदई क्यूट नहीं है यार। मौसम मौसम का जादू तो अभी भी थोड़ा थोड़ा शाम में जो है वो चल रहा है। 32 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है, लेकिन रियल फील 31 डिग्री सेल्सियस वाली है। एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 20% है और विंड जो है 30 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। और दिन की बात करें तो 35 डिग्री तक मामला जो था वो पहुंच चुका था, लेकिन रात का जो माहौल है वो 26 डिग्री सेल्सियस वाला होने वाला है। सो ये है मौसम के हाल। वापस लौट दें और भी बाकी आपके हाल बताना चाहे तो आप उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन वाह वाह वाह, इस गाने के हाल तो बड़े कमाल है यार। जो मैं गाना अभी आपको सुनाने वाली हूँ, अदान समी का नया गाना है लिपस्टिक लगा के, उनका हमने इंटरव्यू भी किया है यार। बहुत ही बढ़िया इंसान है यार, मतलब मजा आ गया। मैंने पहली बार उनसे बात की, सो बहुत ही कमाल के इंसान है वो। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो रेडियो वाले के इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लीजिएगा। जो कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी वो बिट्स एंड पीसेस हैं थोड़े से, जो फुल इंटरव्यू है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। गाना एकदम ग्रैंड है यार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर 1 आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ.
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास. जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us, we complete your home.

फ्रेम था ना यार इस गाने में, मतलब ससुर भी है, बेटा भी है और बहू भी है यार, कमाल का गाना है, एकदम एनर्जी जो है गाने से बढ़ जाती है। 6:31, 21 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, थैंक यू सो मच।

0: ड्रैगन, उसकी जो कोरियो किया गया ना वो भी बहुत ज्यादा पसंद है, और उसका वीडियो जो है वो भी बहुत ज्यादा मुझे पसंद है. सो यस, पिक्चराइजेशन एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा पसंद है. सो मैच के बारे में बात करें, राजस्थान एंड दिल्ली का मैच जो है वो चल रहा है. राजस्थान खेल रहा है 16.2 ओवर कंप्लीट होने का स्कोर हो गया 174, और 5 विकेट जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं. सो यस, मैं जा रही हूँ लेकिन थोड़ी देर में वापस भी लौट रही हूँ.
1: Presented by Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: और अब आपको मैं बताती हूँ कैसी बात जो कि मुझे हजम ही नहीं हो रही है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: रिसेंटली मैं अफ्रीकन फिल्म अवार्ड्स के बारे में पढ़ रही थी। अफ्रीकन फिल्म अवार्ड्स में जहां पर सबने अपने अपने कपड़े जो है पहने, एक लेडी जी थी, एक लेडी थी जिन्होंने, जिनकी ड्रेस जो थी वो टॉप जो था वो गोल्डन था, और उनका जो डाउन वाला पार्ट था जिसको घाघरा वाला पार्ट आप बोल दोगे, सही तरीके से मैं आपको समझाऊं, सो वो जो पार्ट था वो 500 लोव्स जो ब्रेड्स थे ना उसका बना हुआ था। अब ये 500 जो ब्रेड लोव्स थे वो ओरिजिनल थे या नकली थे, लेकिन मतलब इसमें नकली जैसा तो कुछ लिखा नहीं है। मैं पढ़ रही थी, इसका 12th एडिशन हुआ जब अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स का, तो उसके बारे में मैं पूरा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे से जो है वो छूट ना जाए कोई चीज़। बट यस, ये ड्रेस जो थी वो बिल्कुल 500 ब्रेड लोव्स की बनी हुई थी। मतलब मेरे तो दिमाग से नीचे नहीं उतर रही है, ये कैसे कर सकते हैं यार। मतलब आपको कोई ऐसे कपड़े पहनने के लिए दिया, पहन लोगे क्या? मैं तो मतलब अपने नॉर्मल कपड़े में भी ऑफिस में जब पहन के जाती हूँ तो मैं 10 बार खुद को देखती हूँ। बट अमेजिंग यार, कॉन्फिडेंस अलग है लेवल का है इनका।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3

0: कम लोग होते हैं जिनको हम अपने दिल की बात बताते हैं, अपनी दिल की बातें जो है वो उनसे शेयर करते हैं, लेकिन जानना आपके बारे में सब चाहते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया तो आपको दूसरी बार नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने बॉन्ड के हिसाब से दूसरों से चीजें जो है वो शेयर करता है, है ना। सो मेक श्योर कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उसको अनकंफर्टेबल ना करें।

7:19 20 हो गए यार। सबकी लाइफ में ना कोई के एक इंसान जो है वो जरूर होता है जिसके सामने आप पूरा वेंट आउट कर सकते हो। आपका मूड खराब है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो मर्जी हो रहे हैं, है ना, आप वेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन सबका एक अपना अपना कंफर्ट लेवल जो है हर एक इंसान के साथ होता है। सो ऐसी एक रिसर्च बोलती है कि जो जब भी आप अपना वेंट आउट सेशन करना होता है या फिर गॉसिप करनी होती है, वो आप अपने मेल फ्रेंड से ज्यादा कर पाते हो, ज्यादा रिलैक्स करते हो वेंट आउट करके, मतलब जो फीमेल फ्रेंड्स है उनसे कम जो है वो हो पाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट बॉन्ड। अगर आपका आपकी फीमेल फ्रेंड के साथ अच्छा बॉन्ड है तो आप वहीं पे करोगे, अगर आपके मेल फ्रेंड के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है तो आप उनके सामने जो है वो वेंट आउट करोगे, क्योंकि आधे टाइम तो लड़के सुनते ही नहीं है। वो आपका चाहे पार्टनर हो चाहे वो आपके मेल फ्रेंड हो, वो इतना है कि आप जितना भी वेंट आउट कर रहे हो वो कोई बात ही, चला जा तेरे को कुछ खुला देता हूं, है ना। तो उनका वैसा रहता है, वो भी बढ़िया लगता है कि आपको उतनी अटेंशन जो है वो मिल जाती है। लेकिन लड़कियां जो है वो सोल्यूशन भी देंगी आपको। सो वेंट आउट सेशन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इट्स अबाउट बॉन्ड। मुझे तो, मैंने तो मेरी लाइफ में देखा, मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं मैं उनके सामने भी वेंट आउट कर लेती हूँ, मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं मैं उनके सामने भी वेंट आउट कर लेती हूँ। जब आप भरे पड़े रहते हो ना अंदर से, आपको इंसान चाहिए रहता है, चाहे वो मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो। ऐसे हर कोई नहीं हो सकता, बट यस।

0: सुंदरी रेडियो ऑलिव को कहते रहिए जी बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

दिखाने की तरह कि हमको दूसरा मौका जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन माय केस मुझे ऊपर वाला इतने सारे मौके देता है, मैं फिर भी नहीं समझती हूँ यार. ऐसे हो जाता है, ऊपर वाला बोलता है कोई बात नहीं तू मेरा फेवरेट चाइल्ड है, कोई बात नहीं तुझे और मौका दे रहा हूँ, समझ ले यार. अब नहीं समझते हैं तो फिर कहते हैं ना कि इंसान को अकल तब आती है बादाम खाने से नहीं, लात खाने से अकल आती है. 7:32:19 स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है. सिमरन कौर आपके साथ है. राजस्थान एंड दिल्ली का मैच जो है वो चल रहा है एंड राजस्थान खेल चुका है. 194 रन का टारगेट दिल्ली के लिए दिया है. दिल्ली अभी खेल रही है, 3.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 48 एंड एक भी विकेट जो है वो अभी तक नहीं गया है. सो यहाँ ये है अभी तक के मैच का हाल आने वाले गानों में से. और सच्ची कह रही हूँ

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Geo Bindas.
3: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

अपने आप को किसी से कम मत समझना दोस्त। मैं क्या जी सोनिया के दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोड़े ना जी। तो फिर जिसका नाम है मतलब इसको डेटिंग टर्म नहीं बोल सकते एक्चुअली किसी क्योंकि ये एक्चुअली लगती डेटिंग जैसी है जिसको बोलते हैं ब्रेड क्रमिंग। ब्रेड क्रमिंग वे होता है कि आप किसी को ऐसे टाइनी फ्लर्टी हिंट्स देते रहते हो मैसेजेस भेजते रहते हो बट किसी के अटेंशन ग्रैब करने के लिए मतलब। लेकिन कभी भी रिलेशनशिप का प्रोग्रेस कुछ भी आपका इनके साथ नहीं होता, बस आप एक फ्लर्टी हिंट्स जो है वो सामने वाले को देते रहते हैं मतलब उसको ब्रेड क्रम्स जो है वो बोलते हैं ब्रेड क्रमिंग बोलते हैं। सो या पता नहीं क्या ही चल रहा है यार। सिमरन कौर आपके साथ जाना ना हो जहां वही जाता है दिल उल्लू का पट्टा है करेक्ट।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, main hoon Vivek Anand Oberoi. Radio. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

अरिजीत सिंह की आवाज ओए होए होए जी सोने के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में मैच को भी आप में से बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं इसी का ध्यान रख दो। स्कोर अपडेट्स जो है वो आपको डेफिनेटली मिलती है। राजस्थान और दिल्ली का मैच चल रहा है और राजस्थान ने पहले खेलते हुए 194 रन का टारगेट दिया है और दिल्ली अभी खेल रही है 12.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 122 और दो विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो 45 बॉल्स पे 72 रन जो है वो जीतने के लिए

0: ਹਾਂਜੀ मिनट पांच सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे उठ गए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। ओ बेबी
1: ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
0: अभी जहाँ पे भी आप नदी के किनारे हो जहाँ पे भी हो अपना नाम बता दो। आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिए 3311063 पर। जी हाँ 3311063 इस नंबर पे आप जितना भी अपना नाम लिख के भेजेंगे मैं वो नाम बोलने वाली हूँ। बट नो हाई नो हेलो नो वॉइस नोट्स नथिंग सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता नाम 3311063। श्रेया इस्माइल खान हिरेन इमरान मियोनुद्दीन शामसुल हसन जायू इकबाल राहुल मुदस्सिर शकील यूसुफ हेमा शाहिद बिश्नू थैंक यू सो मच निर्मल जी थैंक यू सूरज नियाज प्रभाकर वृंदा रहमान जी हेमराज जी नियाज जी ऑलरेडी बोल चुकी सादी जी थैंक यू सो मच अरे आई लव यू 100 किलो बाद में लिख देना दोस्त पहले अपना नाम लिखो मियाँ इलाज इयाज जी थैंक यू सो मच अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच मोजी थैंक यू सो मच शामसुल जी थैंक यू सो मच मुदस्सिर जी श्रवण जी फातिमा जी बिंदु जी शाबाज जी शिवा जी अदील इमरान अनिकेत नईम सिर्फ और सिर्फ दोस्त नाम लिखना है मोहम्मद जी किसी ने हे लिख के भेज दिया दोस्त हे नहीं होता अपना नाम लिखो ना दोस्त संजय थैंक यू सो मच उस्मान अली जी थैंक यू सो मच रबानी जी थैंक यू सो मच एंड हेतवी जी थैंक यू सो मच उस्मान अली जी प्रभाकर एंड दैट्स इट फॉर नाउ। आप जिन जिन के नाम ले लिए थैंक यू लिख के अपना फेवरेट इमोजी भेज दो और जिनके रह गए कल ट्राई कर लेना दोस्त।

इस्माइल खान जी लिखते हैं, जा सिमरन जा कर ले अपना शो दोस्त, अब तो सच्ची में जाने का टाइम आ गया बाबू जी। सिमरन कौर आपके साथ, मैं गरी सोनिया की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल। जबरदस्त इवनिंग्स में जाने से पहले मैं आपको मैच की अपडेट्स जो है वो दे देती हूँ। आज का मैच राजस्थान और दिल्ली के बीच में चल रहा है और राजस्थान ने पहले खेलते हुए 194 रन का टारगेट दिया एंड दिल्ली जो है 16.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 159, चार विकेट जा चुके हैं। सो 19 बॉलों पे 35 रन जो है वो चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी होगा अब मैं आपको कल बताने वाली हूँ। तो मेरा यहाँ से गल्डी माने का टाइम आ चुका है, बट कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। बट अकेले नहीं छोड़े जा रही हूँ, अगले 2 घंटे जो है वो मिडनाइट लाउंज को आप इंजॉय करिएगा एंड ओवरथिंकिंग मत करिएगा एंड खुश रहो यार लाइफ में। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, किसी चीज़ का स्ट्रेस ले के अपने बाल झड़वाओगे, अपना मूड ख़राब करोगे, सामने वाले का भी मूड ख़राब करोगे, है ना, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से कभी टेंशन कम नहीं होती है। आप उसको जितना ऐसे वो लग रहा है हट टेंशन को, वो फिर बोलेगी बेइज्जती होगी यार, अब तो मैं नहीं यहाँ पे रहने वाली। ठीक है, अभी सिमरन कौर यहाँ से जा रही है। थैंक यू सो मच यार, आप ये जो 4 घंटे मुझे सुनते हो, आप सबका प्यार जो है वो कल वापस से लेने के लिए आऊँगी। सो जाने से पहले मैं शो के आखिरी गाना जो है वो बता देती हूँ।

लोग अपनी जिंदगी से अचानक कैसे चले जाते हैं, लेकिन फिर समझ आया कि सवाल ही गलत था। लोग तो जाते आराम आराम से, धीरे धीरे से सरक लेते हैं, हमें अचानक से पता चलता है कि ए बेटा, इनको जाना था, ये सिर्फ बहाने बना रहे थे। नहीं, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। और कैसे हैं आप? आप भी वही इंसान हैं जो दिल से बहुत साफ है, किसी से अचानक रिश्ता खत्म नहीं करता। ट्रिप पे भी जाना होता है तो उन दोस्तों को याद कर लेते हैं, अपनी खुशियों में याद कर लेते हैं, भले ही दुख में याद ना करें आप उनको, लेकिन अपनी खुशियों में जरूर याद कर लेते हैं। सोचते हैं कि चलो वो भी आ जाएगा, उसको भी बुला ही लेते हैं, यार सबको बुला लिया, उसको क्यों छोड़े, है ना। इवन चाहे थोड़ा बहुत गिले शिकवे भी हो ना, वो भी आप साइड में रख देते उस टाइम पे, आप खुद से बात करके मना के जिद करके बुलाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, जो अपने होते हैं ना, उनको आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, और जहाँ फोर्स करके बुलाना पड़ जाए, वहाँ सामने वाले के लिए आफत हो जाती है। तो आफत वाले रिश्ते पालने नहीं है, नहीं, वो रिश्ते समझने हैं, वो रिश्ते जानने हैं जो हमारे साथ रहना खुश रखते हो, जिनको साथ में रहने से सुकून मिलता हो। और कहते हैं वही कंपनी सबसे बेस्ट है जो आपके साथ रहे और आपका मूड झट से चेंज कर दे, ना कि बिगाड़ दे। तो चलिए, यही वो कंपनी है आपकी और मेरी, जो हमारी दोनों की शाम बहुत बेहतरीन से बनाने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और अगर दिल में कोई भी बात है तो मन में भर कर नहीं जीना है, मन भर के जीना है। मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए, और हर धुन को सुन के कहिए जियो बिंदास।

0: ऐसे कभी कभी ना लाइफ की बड़ी से बड़ी थकान छोटे से कमेंट से दूर हो जाती है ना? वही कमेंट जो आप किसी किसी रील पर रैंडमली करके छोड़ देते हैं ताकि अगर उस कमेंट को कोई लाइक करे तो वापस से आप आकर उस रील को देख सके और अपना मूड वापस से चेंज कर सके, झट से मूड फ्रेश था। 106.3 रेडियो वॉलेट से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और हम सुनने जा रहे हैं
1: रील वाली रियल कहानी।
0: वैसे कहानी तो ये है जनाब, जब हम अपनी मतलब रैंडम सी लाइफ में रैंडम से दुखों से बचना चाहते हैं तो कहीं पर रैंडम सा कमेंट छोड़ देते हैं ताकि कोई भी रील जो है उसको देखे और उस पर वो कमेंट हमारा एक बार बस लाइक कर दे। इसलिए कमेंट भी बड़ा क्रिएटिव सा करने की कोशिश करते हैं और उस पर लिख देते हैं कई बार तो साफ साफ कि भैया जो भी इस कॉमेंट को लाइक करेगा, आई एम जस्ट डूइंग कॉमेंट हेयर जस्ट बिकॉज अगर कोई इसको लाइक करे तो मैं वापस आकर इस रील को देख सकूं। और हम सीधा वापस उस रील पर पहुंच जाते हैं, फिर से देख कर बिना किसी वजह से इंस्टेंट इतनी खुशी मिल जाए क्या बताएं, जैसे जिंदगी ने अचानक एक छोटा सा डोपामाइन गिफ्ट भेज दिया। नहीं, सच बोलूं तो रील तो सिर्फ एक बहाना होता है जनाब, पर वही टाइनी मोमेंट दिल को क्वालिटी स्माइल करा देता है। नहीं, वैसे कभी कभी खुशी रील से नहीं, खुद से लिखे हुए एक छोटे से कमेंट से और किसी की नजर मिलने से मिल जाती है। तो और दोस्तों, ये तो सोशल मीडिया की रील वाली रील कहानी है ना, छोटी छोटी चीजों में बड़ी चीजें जॉयफुल ढूंढ ही लेती है। तो आऊंगा एक और बार नई कहानी के साथ, अभी फिलहाल एक प्यारा सा गाना लेकर आया हूँ। कहानी यही है जनाब कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गायब होनी चाहिए। तो सुनते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

अच्छा, बॉलीवुड के गोल्डन मोमेंट्स में कुछ सीन्स हमेशा याद रह जाते हैं, नहीं? और उनमें से एक था जब दो डांसिंग दीवाज ने एक ही स्क्रीन शेयर की थी। धमाका मच गया ना जनाब, और उसका धमाका आज तक, दो जब एक साथ होते हैं तो हल्के वाली तो देखने को मिलता ही है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में, और अब बारी है वापस जाने की, मतलब

0: फ्लैशबैक।
1: जी हाँ, फिल्मी फ्लैशबैक में तो आज का सवाल लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए। बताइए कौन सी फिल्म थी जिसमें माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ने पहली बार एक साथ डांस किया था। अच्छा हिंट दो, चलो हिंट नहीं दे रहा है, हिंट दे के फिर फायदा क्या है, क्योंकि बहुत इजी है। अब जल्दी से आप मैसेज करो, इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा इनबॉक्स में, हाय आरजे आकाश, और आपका आंसर सबसे पहले जो सही सटीक आंसर करेगा उसके नाम के साथ एक बढ़िया सा गाना मैं उसकी चॉइस का डेडिकेट करूंगा। तो आंसर और अपना फेवरेट गाना लिख के भेजिए, और फिलहाल ज्योति जी की रिक्वेस्ट पे ये गाना सुनते हैं, जियो बिंदास।

अच्छा कुछ मूवीज मतलब ऑरा चेंज करने आती है, कुछ मूवीज जनरेशन को मतलब पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच का गैप फिल करने आती है। कहूँ ना प्यार है, ये एक ऐसी मूवी आई थी जो 90s और 2000 के बच्चों की फेवरेट बनी रही थी। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, और चलो ले चलते हैं आपको वापस से उसी लम्हे में।

0: फ्लैशबैक।
1: हाँ जी, वही मूवी जहां एक ही फिल्म में लॉन्च भी, लव स्टोरी भी, थ्रिलर भी और डबल रोल भी, और ऑडियंस की तरफ से प्यार भी डबल, ट्रिपल, इवन 100 टाइम्स, और रिजल्ट्स 92 अवार्ड्स। यस, 92, मतलब इतना प्यार कि फिल्म का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया यार एक। और सबसे क्रेजी पार्ट पता क्या था, आज तक, इवन अभी तक, किसी बॉलीवुड फिल्म ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने का इवन डेब्यूट, जो ये राकेश रोशन का विजन था कि ये मूवी बनाना, और ऑडियंस का अनकंडीशनल प्यार मिलके एक ऐसी कहानी बना दी इस मूवी को जिसमें अवार्ड्स की शेल्फ भी छोटी पड़ गई। जनाब, वैसे कभी कभी लगता है कि बॉलीवुड के गोल्ड मोमेंट्स, जो गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, आवाजों की तरह रिपीट नहीं होते, बस यादें बनकर हमारे साथ रह जाते हैं। तो आप बताइए, आपकी 90s और 2000 की वो कौन सी एक ऐसी मूवी है जो आप जब भी देखते हैं तो बस आपको आपका बचपन, आपके वो लम्हे, वो स्टोरी आज भी आपका दिल उसी तरह से वापस रिफ्रेश कर देती है। इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और उस फिल्म का नाम बताइए। तो जरा देखते हैं हमारी लाइब्रेरी में उसका गाना कहां पर है, जरा हम भी ढूंढते हैं। लेकिन फिलहाल जो ढूंढा है वो आपके लिए चला रहे हैं जी, रितु जी की रिक्वेस्ट पे एक बहुत प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए। जी, बिंदास।

0: लाइफ में संकट पे संकट आए हुए हैं, दिक्कत पे दिक्कत आई हुई है, अपना मूड चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले डीपी जरूर चेंज करेंगे। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। मिड नाइट लाउंज में डायरी खोलते ही कुछ दिखा मुझे,
1: डिजिटल डायरी।
0: सबसे पहले लोग अपनी डीपी चेंज करना, ओहो वो कभी नहीं भूलते। हाँ वही है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, सबसे बेस्ट एंगल वाली, बेस्ट लाइटिंग वाली, बेस्ट स्माइल, जैसे कहना चाहते हो कि भैया मैं ठीक हूँ, देख लो सबसे बेस्ट हूँ इस समय, खुश हूँ बिल्कुल। पर सच, डीपी ज्यादातर लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती जनाब, वो खुद को कन्विंस करने के लिए होती है। एक छोटा सा मास्क, एक टाइनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होती है, एक रिमाइंडर कि मैं अब

अभी भी कंट्रोल में हूँ। भाई डिजिटल डायरी में मैं ये मानता हूँ कि जब हम प्रोफाइल पिक्चर यू नो मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी फोटोज क्लिक कराते हैं जिससे कि एक प्रोफाइल पिक्चर अच्छी आ जाए, यार ये व्हाट्सएप के लिए बहुत बढ़िया प्रोफाइल पिक्चर है, लेकिन उस इमेज के पीछे जो इमोशंस है, मैं मानता हूँ कि जब आपकी कहीं रैंडम फोटो बहुत बढ़िया आए ना, मतलब मेरा ही पर्सनल मानना है, जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो तो वो ऐसी पिक हो खासकर जो रैंडम हो, हमें उसमें बेस्ट नहीं दिखना है, हमें उसमें वो दिखना है जो अंदर से हमारी दिल कह रहा है। अगर खुश हैं, स्माइल है, अगर किसी ने एकदम से रैंडम क्लिक कर दी, या फिर हो सकता है जिसने करी है और आपके फेस पे स्माइल आ गई, मतलब दिल खुश है यार, तो ही अगर आपका दिल मायूस है और आप लगा रहे हो यार बढ़िया सी, यू नो ये तो वही वाली बात हो गई, ये सबने चैट जीटीपी से मेटा से कह कह के इतनी बढ़िया सी प्रोफाइल पिक बनवा दी और सामने से जाके देखो तो हुलिया ही अलग है। देखो भाई चीज़ों का डिजिटली फायदा लेना अच्छी बात है, पर भ्रम में किसी और को रखना वो गलत बात है। आ रहा हूँ वापस, कही जाएगा नहीं सुन रही रेडियो ऑल एम जी ओ बिंदास।

अच्छा, हर सदी में एक नायक तो ऐसा आता ही है इंडस्ट्री में जो सिंपलिसिटी से लोगों का दिल जीत लेता है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में, और आपको सुनाने जा रहा हूँ और कहानी उस इंसान की जो सिंपलिसिटी में इतना पावरफुल है कि दुनिया ने उसे एक्टिंग का असली फेस कह दिया है। पंकज त्रिपाठी जी, बिहार के एक छोटे से गांव में खेतों के बीच से निकलकर ये लड़का अपने सपनों को देख रहा था। कैमरे के सामने सच बोलने का उत्साह रहा। पहले मिलते थे सिर्फ छोटे रोल्स, लेकिन क्राउड में छुपी एक झलक, पर उस झलक में भी प्रुत इतना था कि इंडस्ट्री ने नोटिस कर ही लिया। गैंग्स ऑफ वासीपुर से लेकर मिर्जापुर, मिमी और न्यूटन तक, पंकज त्रिपाठी ने यह साबित कर दिया था कि एक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं होती है, बल्कि एक्टिंग सिर्फ फील करने का नाम होती है। आज जब वो बोलते हैं ना, तो डायलॉग्स नहीं, जिंदगी चलती है उनके डायलॉग्स के साथ, एक्सपीरियंस दिखता है उनका, राइट? उन्होंने शोबीज में सिंपलिसिटी का मतलब बदल कर रख दिया। तो जनाब, इस चीज से तो यही सीखने को मिलता है पंकज जी से कि जितनी सक्सेस आपको चाहिए ना, उतना ही सिंपल आपको उतना ही डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि आखिरकार लास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस आपको नरम बना ही देते हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना मेरे से डिमांड किया है ऋतु जी ने, तो चलिए साथ में सुनते हैं और एंजॉय करके कहते हैं जियो।

0: देखो यार, सेलफोन तक का ठीक था कि दिन भर उसे हाथ में ले लिए फिरते हो, लेकिन इस टेंशन को क्या करूं, इस ओवर थिंकिंग को क्या करूं जिसको आप अपने माइंड में अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हो। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में। और जानना जरूरी है,
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: जी हाँ, दिन भर ना हम सब कुछ ना कुछ कैरी करते ही रहते हैं, कोई बात, कोई टेंशन, कोई आर्ग्यूमेंट या कोई छोटी सी चुभन। और अजीब बात पता है क्या है, कभी कभी वो बात इतनी बड़ी होती भी नहीं है, पर हम उसे पूरा दिन अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हैं। नहीं तो आज इस रात ना एक छोटा सा रिचुअल करते हैं, लेट इट गो मोमेंट। हाँ, वो एक चीज चूज करो जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर रही थी, बस मेरे कहने पे एक बार उस चीज को चूज करो और अब उसे इस रूम से, या फिर अभी गाड़ी चला रहे हो तो इस गाड़ी से जल्दी से विंडो हल्की सी नीचे करके इस दरवाजे से बाहर छोड़ दो। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक सांस अंदर एक सांस बाहर और रिलीज। प्राण नहीं रिलीज करने, अगर टेंशन लोगे तो जरूर हो जाने, इसलिए टेंशन रिलीज करो, क्योंकि रात का मकसद परफेक्ट होना नहीं होता है, सिर्फ हल्का महसूस करना होता है। और आज की नींद थोड़ी और नरम हो जाए, बस इसी नियत के साथ, बिफोर यू स्लीप लेट इट गो। अभी फिलहाल गाने के लिए यू शुड नॉट डोंट नीड टू गो एनीवेयर, बी देयर, क्योंकि मैं लेकर आया हूं एक ऐसा गाना जो आपकी इस शाम में चार चांद लगा देगा। सी यू बिंदास।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

देखो यार, मेरी मम्मी ने ना मुझे एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी, बाहर निकलो, दुनिया देखो, धोखा खाओ, अनुभव करो, मजबूत बनो, शक्ति ऐसे ही आएगी, वरना घर में पड़े पड़े ना यार कब उम्र गुजर जाती है पता भी नहीं चलता, और आज वो चीज बड़ी काम आती है। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और ये दुनिया ही है जो तुम्हें सिखाएगी, ना स्कूल ना कॉलेज कुछ नहीं सिखाता, वो सिर्फ तुम्हें किताबों का ज्ञान सिखा देगा, वो जिंदगी में कैसे लड़ना है उन चीजों से वो सिखा देगा, लेकिन एक्चुअली वो लड़ाई कहाँ से आएगी, वो तजुर्बा कहाँ से एक्चुअल में मिलेगा, वो दुनिया से मिलेगा, और ये वही दुनिया है जिसके साथ आप दिन भर स्ट्रगल करते हो। ऑफिस ही नहीं है वो सिर्फ, आपका घर, आपके फ्रेंड्स, कई बार तो आप खुद भी हैं, लेकिन उन सबसे लड़ने के लिए ना एनर्जी चाहिए होती है जो मिडनाइट लाउंज में मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करने के लिए अपने आप को, है ना। तो इसलिए यहां से भी जाने के बाद हिम्मत नहीं खोनी है, इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और कभी खुद को अकेला फील नहीं करना है दोस्त, जब भी कोई दिल की बात है जो शेयर करने का मन है मुझसे पेज झिझक शेयर करना, उसके बाद देखना दिल बहुत हल्का हो जाएगा। बाकी जाता जाता बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो डिमांड में अभी भी हैं, बहुत क्यू में खड़े हुए, तो चलिए अपनी लाइब्रेरी से ऐसे ऐसे गाने लगा के जा रहा हूँ, शायद आपका भी गाना उसी प्लेलिस्ट में हो जो मैं सेट करके जा रहा हूँ पूरी रात के लिए, ताकि जो आपका ये सफर है जिंदगी का या गाड़ी का इसी तरह खूबसूरत प्यारा सा रहे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं मिडनाइट लाउंज के सफर में, तब तक कहते रहिए जियो बिंदास, गुड नाइट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
2: रेडियो ऑलिव 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: बन के फूल हर कली मुस्कुराए हाय हाय हाय
1: हाय हाय मिलन की बेला देखो आई बन के फूल हर कली

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।